0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

मेरे वाल है जो तू मेरे नाल है महाराज ता क्या मुछंदा मुछंदे का मतलब है मेनू मोहताज मैं किसे दा क्यों बना मैं किसे कोलों क्यों मंगा जो तू मेरे कोल है मैं तेरे कोलों ही मंगना मैं तेरे अगे हाथ अड्डने ने महाराज तू ही दो मेनू है ना मोहताज नहीं मैं बनना दुनिया का इसे शब्द का बड़ा सुंदर जिक्र आता है जो महाराज नाल हुंदे ने फिर की हुंदा है।

ये जड़े शब्द ने लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर्च रहंदा, जिन्ना मर्जी खर्ची जाओगे जो गुरु नाल आ गया रब नाल आ गया तुहानू पैसे की कमी नहीं आनी। याद रखना ये वेख लो फरमान है महाराज का हुक्म है। लक्ष्मी तोट ना आवई, लक्ष्मी मतलब पैसा, लक्ष्मी दी तोट नहीं आती किन्ना नू जड़े मनुख अपने गुरु दे नाल प्रभु दे चरणा च बैठे हुए थे। खाए खर्च रहंदा, खर्ची जांदे ने खाई जांदे ने तां वी कमी नहीं आउंदी।

ये वैरी मित्र सब कीते हैं। वैरी महाराज जी जो नाल आ जान किसे नाल भी दुश्मनी ना रखना, सब नू अपना मित्र बना लो। सारे मेरे मित्र ने, किसे ना मेरा वैर विरोध नहीं, कोई भी लड़ाई नहीं किसे ना। जे लड़ाइया हैगियां भी ने तां भी खत्म कर लो कि हुण महाराज जी दे नाल आ गए हां, महाराज दे चरणी आ गए हां। ते जिहड़े महाराज नू प्यारे ने तुहाडे सारे, महाराज तुहाडे ते सारी दुनिया प्यारी है ते साडे भी प्यारे ने, है ना। कोई वैर विरोध नहीं रखना। महाराज कहिंदे वैरी मित्र सब कीते हां, ना ही मंगे मंदा। मैं मंदा भी नहीं मंगना, ये नहीं वैर नहीं तो सड़ना भी नहीं कि तरक्की क्यों कर गया, ये मेरा भरा तरक्की क्यों, मेरी भैन तरक्की क्यों कर गया, मेरा ये क्यों तरक्की कर गया, वो भाई क्यों तरक्की कर गया, वो बंदा क्यों तरक्की, मेरा पड़ोसी क्यों तरक्की, सड़ना भी नहीं। ये चीज़ा याद रखने वाली ने, जो रब नाल जा तू मेरे वल है ता क्या मूँह छंदा। महाराज जो तुम मेरे नाल हो फिर मैनू की करना है, वो दस रहे ने महाराज।

ये सिमरन ही काम आना है। ये जो हुण तुसीं सिमरन कर रहे हो ना सारे कट्ठे होके, जो तुहाडे ते औखी घड़ी आउणी है, कोई मुसीबत आउणी है, कोई दुख माड़े समा आउणा, माड़ा दिन आउणे ने, ये सिमरन काम आउणा। उदों तुहानूं इन्ने जान बचाउणी है सिमरन ने। सत

हर बख्शंदा जदों हरी ने बख्श दिता, बख्शंदा मतलब हरी हरी कर लिया, गुरु दे कोल बैठ के की कीता, वाहेगुरु वाहेगुरु की है, हरी हरी करना, रब रब करना, वाहेगुरु वाहेगुरु करना, ईश्वर ईश्वर। जदों मारे कहते लेखा कोई ना पूछे, लेख पलट दिते मारे ने, लेख बदल दिते सारे मारे ने, नहीं लिखिया तो लिख के विखा दे, मैं रब तेनू ता मनना, मेरा मेरा विछड़िया गुरु मला दे, है? मैं रब तेनू

प्रभु भगवान दो जिक्र आए। इस पौड़ी दे अंदर पंचम पातशाही दा शब्द है। महाराज जी कहंदे ने आनंद पया सुख पाया। कदों आनंद आया, कदों सुख मिलिया, जां मारे कहंदे मिल गुरु गोबिंदा, मैनू गुरु मिल गया ते मेरा भगवान मेरा प्रभु मिल गया, मेरा वाहिगुरु मिल गया। देखो उदों सुख मिलता है, उदों आनंद मिलता, आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। जदों गुरु मिल जांदा है आनंद।

सबे काज सवारी है। हुण इस पंक्ति दे महाराज कहिंदे ने सब काज सवर जांदे ने, जां तुद पावंदा जे तैनूं पा गया मैं तेरा बन जा, तैनूं मैं पा गया सारे काज तू सवार के रख देने, सब कुछ ठीक कर देने। ते तुसी महाराज दे क्यों नहीं तुसी लड़न लगदे? कहो महाराज जी अह की लेना इधर उधर, जां तू मेरे वल है, तू मेरे वल है, मैनू किसी

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: कैसे शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

सचे पातशाह गुरु नानक घर की बाणी है, नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाओ, गुरु के शब्द सलाह, और गुरु के शब्द पढ़िया करो, गुरु की शब्द गल करिया करो, गुरु का नाम जपया करो, बस नानक मन समझाइए, अपने मन नु समझाइए, की समझाइए, गुरु का शब्द

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें, अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ जिंदगी को जीने की बातें करते हैं, खुश रहने वाली बातें हम आपके साथ साझा करते हैं और बहुत कुछ खास होता है इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन के माध्यम से। ये सारी बातें जन जन तक हम पहुंचा रहे होते हैं। तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं कि आपको अपने शहर ग्रेटर नोएडा का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कैसा लगता है। इसके अलावा 8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर बता सकते हैं। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है जब हमारे साथ हमारे टीचर जुड़ जाते हैं, वो टीचर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें तराश रहे होते हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें वो हमसे साझा कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। पढ़ने पढ़ाने की जो बातें वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि BGMC की पास आउट स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ रही हैं और उनका जो नाम है वो है प्रियंवदा। 2016 में इन्होंने यहाँ से कोर्स किया जिसका नाम है BGMC। तो प्रियंवदा, आपका फाइनली सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो मच सर।
2: कैसा फील कर रहे हैं, काफी टाइम के बाद आप अपने कैंपस में आए हैं और अपने स्कूल में आए हैं, अपने टीचर से आप मिल रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
3: सर, स्कूल वापस आके तो अच्छा लगता ही है टू मीट ऑल द ओल्ड टीचर्स हु बीन देयर। कुछ टीचर्स तो आई थिंक हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम हियर एंड बाकी जो टीचर्स यहाँ पे, आई ऑलवेज हैड अ वेरी स्पेशल रिलेशन विद ऑल ऑफ देम एंड आई यूज टू वर्क अ लॉट। मैं प्रैक्टिकली 3 साल मैंने फैकल्टी रूम से ही अपनी पढ़ाई की।
2: ओह ग्रेट,
3: बिकॉज वहाँ पे आई यूज टू बी द एडिटर फॉर द न्यूज़पेपर आल्सो शार्डन्स की।
2: एक्सीलेंट,
3: तो मैं प्रैक्टिकली वहीं पे रहती थी।
2: मुझे यूं है कि मैं बहुत चक्का क्यों रह गया, इसके पीछे एक वजह है कि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि उनको पता ही नहीं होता कि फैकल्टी रूम कहाँ है। मतलब आपने वहाँ अपनी कुर्सी जमा ली और लोगों से मिलते रहे, बात करते रहे, तो क्या क्या सीखा उस दौरान आपने?
3: सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई लर्नड वाज द कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क, कि कुछ भी हो, जो भी काम हो, 100% वही उसी को करना है विद फुल फोकस एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यहाँ पे टीचर्स आर वेरी वेलकमिंग फॉर स्टूडेंट्स टू मेक मिस्टेक्स एंड टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज वो आई थिंक सबसे बड़ी सीख होती है। अगर अपनी मिस्टेक्स से आप खुद सीख के आगे बढ़ो, तो जो 3 साल मैंने यहाँ पे अपना सीखा है, वो माय टीचर्स हैव बीन माय कांस्टेंट सपोर्ट। इनफैक्ट ऑल माय टीचर्स, स्पेशली एक अभिषेक सर थे, अशरफ सर थे, इन्होंने ही मेरे को पुश किया था यहाँ से बॉम्बे जाने के लिए।
2: ग्रेट, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा?
3: उनके साथ सर सीखने को बहुत मिलता था। उनकी क्लासरूम ऐसा क्लासरूम नहीं लगती थी, इट यूज्ड टू बी मोर लाइक सिटिंग, टॉकिंग टू हिम, वर्किंग विद हिम। वो साथ में काम करते थे बच्चों के साथ एंड लाइक वहां से उससे सीख बहुत अच्छी मिलती थी। टू एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर जो क्लासरूम में होता है, तो लाइक आई थिंक फॉर मी वो बहुत अच्छा सीखने का एक्सपीरियंस था।
2: अभिषेक सर से तो फोन पे बातचीत हो जाती है?
3: हाँ, अभिषेक सर से भी आई हैव बीन इन कॉन्टेक्ट उनके साथ, पर वो थोड़ा सा वो मतलब आप वो बहुत पुश करते हैं स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट कि अगर उनको पता है कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, वो कितना आगे जा सकता है, तो उनसे तो प्रैक्टिकली हमेशा डांट ही पड़ती रहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो।
2: अच्छा प्रेमदा, मुझे ये बताइए कि ये जो बहुत कुछ आपने सीखा अपने टीचर से, अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से, मुंबई जब आप गए
3: yes,
2: तो कितना काम आया? आपको लगा कि अगर काश मैं वहाँ ये सारी चीजें मिस कर देती तो मैं यहाँ जीरो से स्टार्ट करती। जो आपने सीखा यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से अपने टीचर से कितना काम आया?
3: सब बहुत काम आया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे जब मेरे को सेकंड ईयर में शारदन्स का एडिटर बनने का मौका मिला था सेकंड ईयर से, सो मैं टू इयर्स आई वाज द एडिटर हियर। मेरे को एक तो टाइमलाइन हाउ टू वर्क विद इन अ टाइम लिमिट एंड स्टार्टिंग जब मैंने एडिटर से की थी तो वहाँ पे भी मैंने स्टार्ट एज अ राइटर किया था एंड आई रोट स्क्रिप्ट्स फॉर टीवी शोज, फिक्शन नॉन फिक्शन टीवी शोज। एंड फिर मैं जब क्रिएटिव फील्ड में गई तो एक सर वो जो फाउंडेशन यहाँ बनी थी
2: वो वहाँ काम आया,
3: वो बहुत वहाँ काम आया। इनफैक्ट उसी पे बिल्ड हुआ है मेरा करियर।
2: एक्सीलेंट। ये आंसर में इसलिए जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास कुछ इंटर्न्स आते हैं बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हम यहाँ से पास आउट हैं, इतने फैमिलियर हो चुके होते हैं कि वो उस चीज को सीखना या समझना नहीं चाहते। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं, लेकिन इस मैसेज को मैं अभी इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इस बात का संबंध आपकी बात से संबंध है। तो क्या उनको कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ सीखें, किस तरीके से अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या एक मैसेज होगा?
3: मैं अगर वो मैसेज बताऊं सर, इट इज एक्चुअली कि शारदा में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपको जिस डायरेक्शन में सीखना है, जो सीखना है, टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव हियर एंड टू द फैक्ट कि आप स्टार्ट करके यू कैन बिल्ड योर फाउंडेशन
2: राइट,
3: कि आगे व्हेन यू गो इन द वर्ल्ड यू कंटिन्यू योर करियर, इट रियली हेल्प्स एंड यू कैन फॉल बैक टू योर फाउंडेशन एनी टाइम। वापस आके यू कैन रीलर्न एवरीथिंग फ्रॉम दीज टीचर्स, दे आर दैट ओपन टू यू एज अ स्टूडेंट। एज अ पास आउट आई हैव पास्ड आउट इन 2016, बट टू स्टार्ट लर्निंग, बट टू कम बैक टू द रूट्स एंड जस्ट टॉक टू द टीचर्स एंड लर्न, आई थिंक दिस इज द थिंग। क्योंकि लर्निंग आई फील देर इज नो एज टू
2: बिल्कुल learn. बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जब चाहे आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि बुनियाद अगर आपकी मजबूत होगी तो उस पर आप इमारत को खड़ा कर सकते हैं। और आपकी बेशक इसमें कोई शक वाली बात है नहीं कि आपकी जो नींव मजबूत रही अपने टीचर्स के सानिध्य में, आपने बहुत कुछ नाम कमाया है, कमा रही है। सो लिसनर्स मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आप हैं प्रेम वदा। तो प्रेम वदा के साथ बहुत सारी बातें हो रही है, ये परिचय मैं इसलिए बताना भूल गया, लगा अरे नहीं आप नहीं तो स्टूडेंट है। प्रेम वदा यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और आपके साथ जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ, मेरे साथ हैं प्रेम वदा जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर हैं। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM। मीडिया क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है और कहा जाता है कि ये मजबूत स्तंभ है, और यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। यहाँ का जो मास्कॉम है, यहाँ का जो स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में यूँ कहें कि स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इसके बाद कहीं ना कहीं विदेश में, मुंबई में अपना योगदान दे रहे होते हैं। जैसे कि प्रेमवदा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि 2016 में यहाँ से पास आउट रही हैं, बीजीएमसी का कोर्स इन्होंने किया, इसके बाद मुंबई का सफर रहा, और उसके बाद जो मैं अभी थोड़ा ऑफ एयर मेरी आपसे बात हो रही थी, 2019 का रुख किया आपने विदेश की तरफ। ये फर्दर स्टडी के लिए आपको जाना हुआ या कुछ प्रोजेक्ट की वजह से जाना हुआ उधर?
1: 2019 में मैं गई थी जर्मनी फॉर अ वन ईयर कोर्स इन फिल्म मेकिंग। मैंने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को एज अ स्पेशलाइजेशन लेके। सो एक साल का मेरा कोर्स था वहाँ पे, मेट फिल्म स्कूल करके एक फिल्म स्कूल है बर्लिन में, एंड वहाँ से आई हैव डन माय वन ईयर ऑफ मास्टर्स।
0: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में कितना जमीन आसमान का फर्क महसूस करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दिया जाता है या थ्योरी पढ़ाई जाती है?
1: वहाँ पे प्रैक्टिकल पे बहुत फोकस रहता है। इनफैक्ट एज अ फिल्म स्टूडेंट वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फिल्म एज अ ऑडियंस ना देख के, एज अ स्टूडेंट देख के उस पर क्या अपनी क्रिटिक आप दे सकते हो, वो आपकी थॉट बिल्डिंग करवाते हैं वहाँ पे। कि एक फिल्म को अगर आप देख रहे हो नॉट एज एन ऑडियंस बट एज अ फिल्म मेकर, एज अ स्टूडेंट, तो टेक्निकलिटीज पहचानने का और डिफ्रेंशिएट करने का आप में वो टैलेंट एंड वो स्किल वो लोग डिवेलप वहाँ पे बहुत कराते हैं।
0: ग्रेट। उसके बाद फिर जो आप जर्नी रही, वो कैसी जर्नी रही वहाँ, मतलब आपने कुछ प्रैक्टिकल वहीं किए, वहीं काम किया, या उसके बाद बैक टू पवेलियन या हिंदुस्तान आना हुआ?
1: जब मैं बर्लिन में थी, इन 6 months into my course, वहाँ पे तो लॉकडाउन लग गया था बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन। तो फर्स्ट लॉकडाउन वाज वहाँ पे नोबडी न्यू कि क्या है, कैसे है, क्लासेस कैसे होंगी, क्या होगा। सो कपल ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे मिलके, इनफैक्ट मेरा एक सीनियर है यहीं शारदा का, वो भी वहाँ पे था, हम दोनों ने मिलके एक फिल्म बनाई। एंड प्रैक्टिकल वी थॉट कि जो हमने अभी तक सीखा है 6 महीने में उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो स्कूल से वहाँ पे भी बहुत सपोर्ट मिला इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ स्टूडियो, इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे टीचर्स से डिस्कस करना इतनी नॉलेज वो कि हम ये फिल्म शूट करना चाहते हैं। सो वो सारा लेके वी मेड एक्सपेरिमेंटेड विद अ शॉर्ट फिल्म, 3 मिनट की फिल्म है, इट इज़ ऑन लाइक 1 टेक में हमने पूरी शूट करी, एंड इट इज कॉल्ड कोल्ड मीट। वो लेके भी टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, जब हमने फिल्म उनको प्रेजेंट करी तो उन्हीं का आइडिया था कि अब इस फिल्म को लेके तुम थोड़ा फिल्म मार्केट एक्सप्लोर करो और सीखो।

0: तो वो भी वहाँ पे वेट की किया था कि हम लोग ने फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म डाली, फिर सीखा कि कौन सी मार्केट में कैसी फिल्म चलती है, क्या होता है.
1: तो किस लेवल पर वो फिल्म गई आपकी?
0: वो फिल्म यूएस में हैज वन अवार्ड्स एज बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, एंड आई वाज नॉमिनेटेड फॉर प्रोड्यूसर आल्सो इंडी फिल्म फेस्टिवल्स में इन लॉस एंजेलिस. इंडिया में भी दो फिल्म फेस्टिवल्स, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और गोवा फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म हैज been selected and has won award.
1: Oh, great. बधाई हो. आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, बहुत सादगी से बातें अपनी रख रहे हैं. अदरवाइज तो लोग ये कहते हैं कि आसमान में उड़ रहे होते हैं. बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं. ग्रेटर नोएडा या इसके आसपास की मैं बात करूँ, इस एरिया में दिल्ली एनसीआर में भी फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते हैं. ग्रेटर नोएडा के अलावा मैं बात करूँ, नोएडा में भी फिल्म फेस्टिवल है और आने वाले समय में यहाँ फिल्म सिटी आ रही है. तो क्या कभी कोई यहाँ अपनी फिल्म को लेकर आगे गए, एक बात, और दूसरी बात क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो फिल्म सिटी आ रही है कितना स्कोप होगा स्टूडेंट्स के लिए? दो बातें.
0: सर, ये फिल्म तो अभी फेस्टिवल सर्किट में चल ही रही है. मैंने इसका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, क्योंकि माय एम वाज टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल फिल्म मार्केट. इंडिया का तो लाइक बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग अ स्टूडेंट हियर वर्किंग इन बॉम्बे, थोड़ा बहुत आइडिया तो अंडरस्टैंडिंग फिल्म मार्केट की थी, बट बाहर का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए दिस फिल्म पर्पस वाज दैट. अब आफ्टर द फिल्म फेस्टिवल सर्किट नेक्स्ट ईयर फिर ये फिल्म हम लोग यहाँ पे नोएडा दिल्ली में थोड़ा उसको वो करेंगे,
1: एक्सप्लोर करेंगे.
0: एंड इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पे फिल्म सिटी आ रही है फॉर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द बेसिकली प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन जो हम पेपर पे सीखते हैं और जो हम फिल्म सेट पे सीखते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. एक फिल्म एटिकेट होती है जो सेट पे,
1: राइट,
0: एज अ प्रोफेशनल जब आप स्टेप इन करते हो फिल्म सेट पे, वो आई थिंक क्लासरूम के बियॉन्ड एक लर्निंग है.
1: बिल्कुल सही कहा.
0: वो आप यहाँ पे ऑन पेपर विद टीचर्स जितना सीख सकते हो, बट वेन यू स्टेप इन टू दैट फिल्म सेट और वेन यू स्टेप इन टू लाइक इन अ प्रोफेशनल फील्ड, वो आई थिंक स्टूडेंट्स विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ पे फिल्म सिटी बन जाएगी. इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. तो मतलब सबको बॉम्बे नहीं भागना पड़ेगा.
1: दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा स्कोप रहेगा स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पास आउट हो रहे हैं. अभी आपने एक बहुत अच्छी बात छेड़ दी है प्रेमवदा, कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जब आप फील्ड में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं, डायरेक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं या कुछ और. उस समय बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं कि नो डाउट, जैसे आपने खुद कहा कि मैं यहाँ से सीख कर गई थी तो मुंबई में मुझे वो सारी चीज़ें काम आई. कुछ लोग तो जाहिर सी बात है कि अपने समय को ख़राब कर रहे होते हैं, 3 साल या 4 साल वट एवर जो भी है, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि मुझे पका पकाया मिल जाए. एक तो धैर्य की कमी होती है, दूसरा ये भी होता है कि वो सुनना पसंद नहीं करते. अगर टीचर, जाहिर सी बात है टीचर के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सुनना नहीं चाहते, फिर वो डायरेक्टर की या असिस्टेंट डायरेक्टर की कैसे सुनेंगे अगर वो सारी चीजें, यूं कहें कि जो आप एटिकेट्स की बात कर रहे हैं, तमीज की बात कर रहे हैं, अगर किसी विद्यार्थी में वो सारी चीजें हैं, सुनने की क्षमता है, सीखना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेगा. और जिस विद्यार्थी के पास ये सारी चीजें नहीं है, क्या कहना चाहेंगे?
0: अभी भी टाइम है सीखने को, बट वहां पे जाके आपको कोई दोबारा अगर आपने गलती करी कोई बैठ के समझाएगा
1: नहीं, समझाएगा, राइट,
0: ये एक चीज है. वहां पे अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी विद वन
1: किसी mistake, को मतलब नहीं है आपसे, राइट,
0: तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे. आप अपनी मिस्टेक जहां तक आप जब तक रियलाइज करोगे, फिर टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन वो थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है.
1: क्या कहना चाहेंगे शारदा, यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में काफी समय के बाद आप आए हैं, रेडियो स्टेशन उस वक्त आपका आपके सामने बन रहा था और आज आप रेडियो स्टेशन में हैं एक, और आपका एक साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ. सो कैसा फील करते हैं अपनी कॉलेज में आकर, रेडियो स्टेशन में आकर, क्या कहना चाहेंगे फाइनली?
0: एक्चुअली सर, आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जहाँ पे मतलब व्हेन हम लोग थे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना एम्फेसिस ऑन अ फिल्म स्कूल, ऑन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं था. एंड नाउ अब आके देख रही हूँ कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हो गई हैं. सो आई फील लाइक कि एज स्टूडेंट्स वी मिस्ड आउट ऑन दैट. हम लोगों को हर चीज के लिए वी वर लाइक कि अपने से वो करते थे,
1: जी जी,
0: बट नाउ यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज देख के फॉर स्टूडेंट्स आई फील रियली हैप्पी एंड रियली प्राउड.
1: रियली नाइस. सो मैं भी यही कहूंगा आपकी बात का एक निष्कर्ष निकालते हुए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस अवसर का उनको फायदा उठाना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मुंबई जाना चाहते हैं या फ्रीलांस अपना कुछ काम करना चाहते हैं, जो सीखने का मौका आपको मिल रहा है, जिंदगी शायद वो दोबारा आपको सीखने का मौका ना दे. और अगर आप किसी डायरेक्टर के साथ काम करें तो धैर्य पेशेंस होना बहुत जरूरी है. पैशन के साथ आपने उस पेशेंस को जब आप कैरी करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा वो सुखद आएगा. सो प्रेमवदा, मुझे आपसे बात करके वाकई बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा. और खास बात ये अच्छी लगी कि जो आपने कहा वो मैंने पाया आपकी सादगी में. और मैं आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत दुआएं करता हूँ और सब कुछ अच्छा हो, बेहतर हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं.
0: थैंक यू सो मच सर.
1: सो लिसनर्स, आप थे हमारे साथ प्रेमवदा, जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं. ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर. इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM. मैं हूं गगन, मुझे दीजिए अनुमति. जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारते चले जाइए. ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत. टाटा बाय बाय, टेक केयर.
2: प्ले, क्या बात है.

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है, जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। जी हां दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर की बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे श्रोताओं के मन में सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की, और कोशिश रहेगी कि इन सवालों के जवाब भी हम दें। जब भी कोई पहल होती है, खास तौर पर सेहत के मामले में, तो परिवार जनों के मन में डर और सवाल रहते ही रहते हैं। खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बातों से लोग उलझन में हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं, और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? अब जान लेते हैं इस सवाल का जवाब। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या HPV टीका सुरक्षित है? तो जानते हैं इसका जवाब। जी हाँ, बिल्कुल, HPV टीका सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं। ये सामान्य बातें हैं और आम तौर पर जल्दी ठीक हो जाती हैं। तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? तो इस सवाल का जवाब है, गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, इसलिए अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर कोई चिंता हो तो आशा बहन जी, ANM बहन जी और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से बात करें। अब आता है सवाल नंबर 4, ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? तो इसका जवाब है, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। ये बीमारी महिलाओं में होती है, इसलिए किशोरियों को बीमारी आने से पहले सुरक्षा देने के लिए ये टीका लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं, HPV टीका मां बनने की क्षमता पर असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है, बांझपन या कमजोरी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। सवाल नंबर 6, क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही हैं? तो इसका जवाब है, हर बात सही नहीं होती, कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही लें। अब बारी आती है सवाल नंबर 7 की, जो कि आखिरी सवाल है, टीका कब और कहां लगेगा? तो इसका जवाब है, इसके लिए अपनी आशा बहन जी, ANM बहन जी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। वो ही आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। सेहत सही लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: रामनाथ दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। भाई मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि सबका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल 9:02 हो चुके हैं, 28 तारीख है, यानी कि मंगलवार का दिन, और बजरंग बली से यही प्रार्थना कि सबका मंगल ही मंगल हो, कभी किसी का अमंगल ना हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ इनकी शुरुआत करते हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:13 हो चुके हैं। 28 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत जरूरी है। बरसात का मौसम है, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है और देसी भाषा में इसको कहा जाता है सनूने, यानी कि जब बारिश का मौसम आता है तो हरियाली चारों तरफ देखते ही बनती है। बारिश का जब मौसम शुरू होता है तो इंतज़ार रहता है रक्षाबंधन का। बारिश का जब मौसम शुरू होता है तो इंतज़ार रहता है उन झूलों का। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी वापस घर आया। क्या बात है। ऐसी तमाम गाने, पुराने गाने जो थे आज भी तरोताज़ा हैं और उन गानों को सुनकर हम बड़े खुश होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जब बारिश होती है, बारिश न हो तो दिक्कतें परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बारिश हो तो भी दिक्कतें परेशानियाँ इस कदर हो जाती हैं क्योंकि जल भराव की स्थिति हो जाती है, नाले साफ नहीं होते, सीवर का ढक्कन खुले रहते हैं, तो हमें अलर्ट कर चलने की बहुत जरूरत है। लेकिन फिलहाल आज के मौसम की अगर मैं बात करूं तो आज का मौसम यानी कि मौसम की अपडेट क्या सामने निकल कर आ रही है, तो आज यानी कि 28 जुलाई 2026 को ग्रेटर नोएडा में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता की वजह से आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और कई दौर की तेज बारिश होने की भी संभावना है। अधिकतम जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है और ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो 75% से 80% के उच्च स्तर पर रहेगी। सोचिए इस कदर उमस रहने वाली है और उमस महसूस हो सकती है आपको, तो बस डरे नहीं, घबराए नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, पानी भरपूर पीजिएगा और बाहर के खाने से अपने आप को बचाकर रखिएगा। हम चाहते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए जरूरी है कि खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर। स्काई फोर्स का ब्यूटीफुल ट्रैक, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, अलग अलग गड्डी पूरे होश आवाज में चलाएगा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूँ सार। मिलिए डॉक्टर से, न करें विचार अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: क्या बात है। इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ, जुगराज संधु की आवाज।
1: आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
0: बिल्कुल आपने सही सुना कि ये थे हमारे साथ रौनक, भी जुड़े रहते हैं और आपसे कह रहे थे कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। वहीं रेडियो की प्रोग्रामिंग सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक लगातार हम यहाँ से ऑन एयर होते हैं। ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। साथ ही साथ हम आपको हमेशा अप टू डेट रखते हैं, अपडेट रखते हैं कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का यही फर्ज है कि हम आपको पहले से आगाह कर दें, अलर्ट कर दें कि बारिश होने की संभावना है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जी हाँ, अपडेट निकलकर यह सामने आ रही है कि यूपी में मंगलवार यानी कि आज मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव रहने का अनुमान है। ईस्ट वेस्ट यानी कि हर जगह लगातार बारिश, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और यूं समझ लीजिए कि बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। और बंगाल की खाड़ी से जो आने वाला मॉनसून है, जो उसका प्रवाह है, बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत होने की वजह से जो उत्तर प्रदेश है उसके ऊपर बने जो मौसमी सिस्टम की वजह से मॉनसून की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ी हैं और इसी वजह से आगामी दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं तो उसको जो डेट है उसके आगे आप पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और जो जिले हैं जैसे कि सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और इसके अलावा पूरे प्रदेश का भी जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो लगभग हालात ऐसे ही हैं, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। जब जलमग्न सड़क हो जाती है तो पार करने से आप बचें, पेड़ों के नीचे शरण आप ना लें, बिजली गिरने के दौरान सुरक्षित भवनों में रहने और यात्रा से पहले मौसम की जानकारी आप ज़रूर ले लें और जो व्हीकल आप चला रहे हैं तो उस समय सावधानी बरतने का जो कहते हैं नियम कायदे कानून है उसका ध्यान दीजिएगा। और नदी नालों, जलाशयों के पास न जाने की भी अपील की गई है। ये खास बात मैं जिक्र करूंगा कि इससे कैसे घटना दुर्घटना घट सकती है और कैसे अपने आप को आप बचा सकते हैं, जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिंगुचा ठग फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं सुखविंदर पाजी की आवाज सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: अरे भैया रामू।
1: हाँ भैया श्यामू।
0: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
1: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
0: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6000 रुपए में हो रही है।
1: अच्छा तो भैया लेके चल, अब ही चल।
2: तो अब ही चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना

घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:41 हो चुके हैं। 28 तारीख है, हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। वर्तमान समय में बारिश बहुत ज्यादा होने की संभावना है, कहीं कहीं बारिश हो भी रही है। और दिल्ली एनसीआर का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो जब हम देखते हैं कालिंदी कुंज पर, क्योंकि वहीं से हमारा आना जाना होता है, पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि कुछ बच्चे या बड़े नहाने की सोचते हैं, स्नान करने की सोचते हैं और वहीं घटना दुर्घटना घट जाती है। ऐसी खबर हमारे सामने, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है जो कि हमें एक सीख देती है। गीता कॉलोनी के यमुना खादर में चार युवक वहाँ स्नान करने गए, यानी कि नहाने के लिए गए, और तेज बहाव की वजह से वो डूब गए और जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन व्यक्ति की तलाश की जा रही है। संभावना जाहिर सी बात है कि आई होप वो सुरक्षित निकले, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर एक घटना हमें सीख देती है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, यही अलर्ट तो किया जा रहा है, यही संभावित चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि घटना दुर्घटना घट सकती है, आप अपना ख्याल रखें। जैसे कि जहाँ जल भराव की स्थिति है वहाँ से आप अपने आप को बहुत सोच कर समझ कर निकालिए। अगर आपका कोई व्हीकल है तो वहाँ से बहुत ध्यान से निकालिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं कोई सीवर लाइन वहाँ हो और ढक्कन खुला हुआ हो, दुर्घटना घट जाएगी। दूसरा, जो बिजली के पोल्स हैं वहाँ आप ना खड़े हों, जहाँ बिजली गिरने की संभावना है वहाँ आप ना खड़े हों। और ऐसे एक्सपर्ट खेतों के लिए भी बताते हैं, यानी कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा पानी निकालने, लगातार बारिश की वजह से जो उर्वरक है, जो खाद है, उसका प्रयोग नहीं करने, जल भराव से बचाव की व्यवस्था करने और फसलों में रोग और कीटों की निगरानी करने की सलाह दी जाती है। गन्ना, धान, अरहर, खरीफ, मक्का, मूंगफली, तिल, उड़द, मूंग, सब्जियों तथा आम, केला और पपीता जैसे बागवानी फसलों के लिए अलग अलग एहतियाती उपाय भी जारी कर दिए गए हैं। तो प्लीज़ समझदारी से आप आगे बढ़िए। आपकी जान बेशकीमती है, आपसे कोई बेपनाह मोहब्बत करता है, आपकी सलामती के लिए कोई दुआएं करता है। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल ट्रैक, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं लेकिन गड्डी बुरी हो जाओ आवाज में चलाएगा। आय है क्या।

0: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आए पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या हो बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:49 हो चुके हैं, 28 तारीख है यानी कि मंगलवार का दिन। और ईश्वर से यही प्रार्थना कि सबका मंगल ही मंगल हो, कभी किसी के साथ कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कहते ना कि कभी कभी जबान फिसल जाती है, लेकिन बरसात के मौसम में आप ना फिसलें इस बात का ध्यान रखिएगा। और जबान की रही बात यानी कि तोल मोल कर बोलना बहुत जरूरी है। और जब रही बात फिसलन की, तो फिसलन के लिए जरूरी है कि संभल कर कदम रखने की बहुत आवश्यकता है, अदरवाइज दिक्कतें परेशानी बहुत ज्यादा हो सकती है। इवन आप देखें कि बाथरूम में जब आप स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं, नहाने के लिए जा रहे होते हैं, कहीं पैर फिसल जाता है तो चोट लगती है और बहुत गंभीर चोट हो जाती है ना। तो बहुत सोच कर समझ कर चलने की आवश्यकता है और अपनी सेहत का ख्याल रखें, लापरवाही ना बरतें। जैसे अगस्त आता है,
1: अगस्त से मतलब नहीं है, मतलब जो भी महीना आता है,
0: हाँ जैसे भी जो भी महीना आता है और पहली तारीख से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि एलपीजी सिलेंडर पर बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि कॉमर्शियल और जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमतें अभी हाल फिलहाल में चेंज की गई थी इस मंथ, और अब क्या होगा ये देखने वाला एक विषय है। दूसरी बात निकल कर ये सामने आ रही है कि यानी कि ATF की कीमतों में भी चेंज हो सकता है। और ATF यानी कि मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हर महीने की पहली तारीख को न सिर्फ LPG सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं, बल्कि हवाई ईंधन यानी ATF के भी नए रेट जारी किए जाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक संशोधन का विषय है, तो देखना ये बाकी है कि क्या होगा। तीसरा जो बदलाव है वो 1 अगस्त 2026 से कई बैंक भी अपनी सर्विस पर शुल्क में बदलाव करने वाले हैं। और इसके अलावा चौथा बदलाव यह है कि रेल टिकट के नियम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि अब टोकन देने का जो समय तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ होगा। और पांचवा बदलाव यानी कि GST में भी कुछ नियम कायदे कानून बदलते हुए नजर आएंगे। इसके बारे में वह आप मालूम हासिल कर सकते हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टूडियो ऑल यू सुरु शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। धुरंधर फिल्म का ये गाना रन डाउन। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: वक्त का इशारा, मैं होता हूँ 9 to 11, लेकिन अभी थोड़ा और वक्त है, इस वक्त को हम जीना चाहते हैं। ऐसी जिंदगी में मुझे लगता है कि जितना वक्त आपको मिले सदुपयोग करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, समाज का ख्याल रखिए, और समाज में कहीं ना कहीं अगर हम अच्छा योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक पहचान बनेगी और आपके बच्चे भी बड़े खुश होंगे, है ना।
1: हाँ, ये मतलब कोई हम ज्ञान नहीं दे रहे, हमने देखा है। जैसे छोटी सी बात बताना चाहेंगे।
0: हाँ, छोटी सी बात ये कि एक पौधा अगर आप रोप रहे हैं, वही पौधा वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, और वही सीन आपका बच्चा देखता है तो बड़ा खुश होता है, और बड़ी खुशी मिलती है जब वही पौधा पेड़ बन जाता है। जहाँ लोग आकर गाड़ी पार्क करते हैं, सुस्ताते हैं, वहाँ आप एक प्याऊ लगा लेते हैं, और अक्सर ऐसा भी हम करते हैं क्योंकि जहाँ हमें पेड़ मिलता है उसी छाँव में हम बैठना चाहते हैं, सुस्ताना चाहते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं, है ना। तो क्यों ना हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें, बेहतर करें, और यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM अपनी जो कोशिशें हैं लगातार जारी रखता है। सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक हम यहाँ से ऑन एयर होते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी बातें म्यूजिक के साथ, इंफोटेनमेंट के साथ हम आप तक पहुँचा रहे होते हैं। यूथ यानी कि जो युवा है, देश का भविष्य है। सो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने आप को सेहतमंद बनाकर

और जब सेहत ही नहीं होगी तो हम क्या अच्छा कर पाएंगे, क्या बेहतर कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप हैं अगर आपका स्वास्थ्य आपके साथ है। यही वजह है कि सुनो शारदा 90.8 FM हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे आज सेलिब्रेट कर रहा है। सेलिब्रेशन से मतलब यह है कि लोगों को अवेयर कर रहा है। जागरूकता वाला एक विशेष कार्यक्रम सुबह 10 बजे यहां से सुनना ना भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत है जनाब, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। 01204060205 पर आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, आपके अपने सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन। और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं रोज़ाना कार्यक्रम रेडियो OPD में। और आज के कार्यक्रम में खासकर हम बात करेंगे हेपेटाइटिस की। बीमारी कोई भी हो, कहीं ना कहीं हमारा धन का, स्वास्थ्य का, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं अगर हम लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी छीन लेती हैं। हमें एकदम से सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। और आपको ये भी बता दें कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी। आप प्रोफेसर और HOD हैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन शारदा हॉस्पिटल में। तो सर, सबसे पहले कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए।
0: तो सर, हेपेटाइटिस की आज हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम हेपेटाइटिस को समझना चाहेंगे हमारे जो सुनने वाले हैं कि आखिर ये है क्या।
1: हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लिवर का वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाना। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में, वो खासकर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पर, जिसको हम आम भाषा में काला पीलिया भी बोलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब भी लिवर वायरस की बीमारी से ग्रसित होता है तो उसमें मरीज को पीलिया के लक्षण आ सकते हैं, और उसके बाद वो ठीक होने के बाद भी वो इन्फेक्शन शरीर में रह सकता है लेकिन मरीज को मालूम नहीं होता है, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके एक लंबी बीमारी में तब्दील हो जाता है, और कुछ लोगों को उससे कैंसर भी हो सकता है।
0: बिल्कुल। तो सर, आपने बात की लिवर की, तो शरीर में जो लिवर है इसका तो आम लोग नहीं जानते हैं क्या महत्व, तो आप इसके बारे में बताएं कितना बड़ा कार्य है और क्या हमारे शरीर में महत्व है। अगर इसकी जो कार्यविधि है, फंक्शन है, अगर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है तो क्या हमारे शरीर पर असर पड़ता है।
1: आपने बहुत सही सवाल पूछा। लिवर हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, और लिवर का काम एक तरह से समझ लीजिए कि हम जो भी चीज़ अंदर लेते हैं ब्लड के द्वारा लिवर तक पहुंचती है, और लिवर उसको प्योरीफाई करके और फिर दोबारा से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा देता है। और इसके लिए लिवर का बहुत अच्छे से काम करना आवश्यक होता है। जब भी वायरस की बीमारी से लिवर ग्रसित होता है तो लिवर में सूजन आ जाना, लिवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाना, फिल्ट्रेशन फंक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, मतलब के जहरीले तत्वों को ब्लड से निकालना, वो तत्व उस फंक्शन में तब्दीली आ जाती है जिसके चलते वो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगते हैं, शरीर में पीलिया या जॉन्डिस दिखाई देने लगती है जिससे हमारी आंखें पीली हो जाती हैं, हमारी स्किन पीली हो सकती है, पेशाब पीला हो सकता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, भूख का ना लगना, बार बार उल्टी आने जैसा लगना या उल्टी आ जाना, और शरीर में कई तरह के तत्वों की कमी हो सकती है जो कि लिवर की बीमारी से हो सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सर आपने बताई कि लिवर का जो हमारे बॉडी में है कितना महत्वपूर्ण काम है। अब बात आती है कि इतने महत्वपूर्ण काम है लिवर का शरीर में, तो किस तरह से लोग इसको स्वस्थ रख सकते हैं।
1: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे ज़्यादा जो हानिकारक लिवर के लिए चीज़ें होती हैं वो हैं पॉल्यूशन की बीमारी, चाहे वो इंजेक्शन के द्वारा हो, चाहे वो बिना धुले हाथों से किसी हेपेटाइटिस के रोगी से संपर्क हो, या क्लोज संपर्क हो सहवास या सेक्स संबंधों के साथ, इन सब चीज़ों से हेपेटाइटिस की बीमारी शरीर में प्रवेश कर सकती है।
0: तो बीमारी प्रवेश ना करे तो इसके लिए क्या कुछ वो इंतज़ाम करें लोग, किस तरह से हमको जो है हेपेटाइटिस की बीमारी ना हो, तो किस तरह से अपना ख्याल रखें।
1: हेपेटाइटिस की बीमारी हमें ना हो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि शुरुआती तौर से ही, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तभी से इसकी रोकथाम के उपाय शुरू हो जाएं, जैसा कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण का होना समय समय पर। और कुछ एक हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जिनको ज़्यादा इस चीज़ का अंदेशा रहता है, जैसे कि हॉस्पिटल वर्कर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, या जो हेपेटाइटिस के रोगी हैं उनकी देखभाल करने वाले लोग, उनको इस चीज़ का बीमारी का लगने का ज़्यादा अंदेशा रहता है। तो उनमें रोकथाम सबसे पहले वैक्सीनेशन होनी चाहिए। वैक्सीनेशन होने के बाद समय समय पर रोगी को या केयर टेकर को टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिसके चलते जल्दी से जल्दी हेपेटाइटिस की बीमारी का पता लग जाए और बीमारी का पता लगने के बाद या तो उसका उपचार या उसके रोकथाम के उपाय किए जा सके।
0: बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि इस तरह से बीमारी को रोका जा सकता है अगर वैक्सीनेशन समय पर करवा लिया जाए। तो ये हम वैक्सीनेशन की सर आपने बात की है, तो ये कब इसका वैक्सीनेशन होता है खासकर बच्चों में?
1: देखिए, बच्चों में जन्म के कुछ दिन बाद ही हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, और दूसरा काला पीलिया जो हेपेटाइटिस सी के रूप में जाना जाता है उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन बहुत आने वाले सालों में उसकी भी आने की उम्मीद है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही लगाई जा सकती है, माँ के गर्भधारण करने से पहले हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जा सकती है, स्कूल जाने वाले बच्चों में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जा सकती है, एडल्ट्स जो कि बड़े हो गए हैं जिन्होंने पहले हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं ली है और वो एक हाई रिस्क प्रोफेशन में है, जैसे कि मैंने पहले बताया हेल्थ केयर वर्कर्स या हॉस्पिटल वर्कर्स, उनमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन की जा सकती है।
0: तो सर, जैसे आपने वैक्सीन की बात की है, वैक्सीनेशन की बात की है, तो जो लोग जानकार हैं, जागरूक हैं, वो तो वैक्सीनेशन अपना भी करवाते हैं, बच्चों का भी करवाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे समुदाय में ऐसे लोग हैं, माता पिता हैं, जो बच्चों के वैक्सीनेशन जब होता है या टीकाकरण वाला आते हैं, जो एनएम है या कोई आशा है, तो कहीं ना कहीं कतरा आते हैं, तो ऐसे माता पिताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं ऐसे माता पिताओं से यही कहूंगा कि हेल्थ के प्रति जागरूक रहना आपके बच्चे के लालन पोषण की जितनी जिम्मेदारी है उतनी ही ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी है उनके हेल्थ या उनके स्वास्थ्य के ऊपर भरपूर ध्यान देना, और टीकाकरण करवाने से या टीकाकरण करने के लिए आए व्यक्तियों से आप डरे नहीं, ये बिल्कुल हानिकारक टीका नहीं है, इससे कोई रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और टीकाकरण होने से आपका जो बच्चा है वो आगे जाकर के बड़ा बनेगा और उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर हेपेटाइटिस की रोकथाम की जा सकती है सिर्फ एक टीकाकरण से। तो आप आगे से आगे आगे आएँ, आप अपने साथ में पड़ोस में आपसे मिलने जुलने वालों को भी इस चीज़ के बारे में प्रेरित करें, और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छा उपचार है। आने वाले समय में लिवर की कई चीज़ों से आप बच सकते हैं, कई बीमारियों से बच सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि मान लीजिए किसी को ये बीमारी हो चुकी है, हेपेटाइटिस जैसा आपने बताया कई प्रकार की होती है, तो अब इसका उपचार क्या है?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि रोकथाम नहीं हो पाया समय पे और बीमारी आ गई शरीर में, तो बिल्कुल घबराने की या डरने की बात नहीं है, तुरंत आप डॉक्टर से मेडिकल सलाह लेकर के कुछ एक टेस्ट किए जाते हैं जिससे हमें यह मालूम पड़ता है कि वायरस कितने तेज़ी से शरीर में फैल रहा है और उसकी क्वांटिटी या उसकी मात्रा शरीर में कितनी है, वो ब्लड के कुछ एक स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं जिनसे हम ऐसा पता लगा सकते हैं। वो करने के बाद हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों के लिए दवाइयां बनी होती हैं। हेपेटाइटिस बी को ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग लेना होता है, ज़िंदगी भर लेना होता है, उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि वो रोकथाम आने वाले समय में लिवर की और कॉम्प्लिकेशन जैसा कि कैंसर हो गया या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो गई उससे रोकने में मदद करेगा। और हेपेटाइटिस सी का जो इलाज है कम से कम वो 4 से 6 महीने दिया जाता है, और उसके बाद समय समय पर उसकी जांच करनी पड़ती है, अगर दोबारा से वो फिर से आ जाता है ब्लड में तो फिर हम दोबारा से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
0: तो क्या डॉक्टर साहब, जैसे किसी को हेपेटाइटिस, जैसे आप बता ही रहे हैं, किसी को हेपेटाइटिस हो गया है, वो इलाज करवाता है, तो इलाज अगर वो पूरा करवा लेता है तो क्या ये बिल्कुल ठीक हो जाता है?
1: बहुत सही सवाल, ये उस समय काफ़ी समय के लिए बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, जिसको हम कहते हैं फेज ऑफ रेमिशन, वो बिल्कुल क्योर हो जाता है, वो ज़ीरो लेवल तक पहुंच सकता है, और कुछ लोगों में वो आगे जाकर के पनप ना पाए ऐसा होता है, लेकिन जो ऐसे हाई रिस्क प्रोफेशंस होते हैं या जो देर से इलाज के लिए आते हैं उन लोगों में इसके फिर से पनपने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन पनपने के तुरंत बाद दोबारा से भी इलाज लेना संभव रहता है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब हम जानना चाहेंगे, जैसे कि 9 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, तो ये जो दिन है वो क्यों मनाया जाता है, हम सब लोगों के लिए इसका क्या महत्व है?
1: देखिए, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो हम इस बार 28 जुलाई को मनाने जा रहे हैं, और हमारे हॉस्पिटल में भी उसके ऊपर हमने एक कार्यक्रम, एक एजुकेशन प्रोग्राम रखा हुआ है और एक मेडिकल कैंप फ्री ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों के अंदर हेपेटाइटिस या काला पीलिया की बीमारी के बारे में अवेयरनेस बढ़े, उनको इसके बारे में जानकारी

0: जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में इस समय कम से कम 30 करोड़ के करीब लोग काला पीलिया से ग्रसित हैं, तरह तरह की स्टेजेस में। और जितने बच्चे पैदा होते हैं पूरे दुनिया में, उसमें आधे से भी कम को ही सिर्फ वैक्सीन मिल सकती है जन्म के समय पर। और बहुत दुख का विषय है कि कम से कम 13 से 15 लाख के बीच में लोग ट्रीटमेंट या टीकाकरण के अभाव में इस दुनिया को छोड़ देते हैं, वो इस बीमारी से मर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो सबको जागरूक रहें हेपेटाइटिस के प्रति, इसलिए ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, तो इस दिन वो क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहा है आम लोगों के लिए?
0: देखिए, आम लोगों के लिए हमने 29 जुलाई को सुबह 9 बजे से एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जो कि शारदा हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर डी ब्लॉक में मेडिकल ओपीडी के प्रांगण में होगा। और उसमें लोगों का जनरल मेडिकल चेकअप, और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि काला पीलिया की बीमारी कई बार कोई लक्षण नहीं पैदा करती शरीर में और साइलेंटली आ जाती है, चुपचाप आ जाती है, तो उन सब का फ्री ऑफ कॉस्ट काला पीलिया बी, जिसको हम हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, और हेपेटाइटिस सी, दोनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ब्लड का टेस्ट होगा। और जिसको भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ताकि समय पर हमें मालूम पड़ सके कि आप में से कितने लोग उस बीमारी से ग्रसित हैं और हम उसका इलाज आपको सही समय पर पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा जो शरीर है, बहुत सारे अंग इसमें काम करते हैं, चाहे लिवर की बात हो, लंग्स की बात हो, और भी बहुत सारे अंग हैं, और सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं, तो सब स्वस्थ रहें, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक इंसान को किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ वो रख सकता है?
0: बहुत अच्छा सवाल, और बहुत समय पर यह सवाल पूछा गया। सिर्फ लिवर ही नहीं, हमारे दूसरे भी अंग हैं, जैसे कि गुर्दा या किडनी या ब्रेन या हार्ट, इन सबको भी हमें सुरक्षित या स्वस्थ रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि लिवर को। और सभी अंग स्वस्थ रहें, उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपना खान पान, अपने एक्सरसाइज या शरीर की जिसको बोलते हैं कि एक कसरत, और ऐसी चीज़ों से बचा जाए जैसे नीडल स्टिक इंजरी या साफ सफाई का ध्यान रखा जाए सब चीज़ों में, तो सब तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। खासकर अंगों को प्रभावित करने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि लिवर को प्रभावित करने वाली हेपेटाइटिस हो गई, किडनी को प्रभावित करने वाली क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई, इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं अगर हम सिर्फ अपने स्वास्थ्य, खान पान और साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके बाद समय समय पर हम अपने जाँच पड़ताल कराते रहें, अपने शरीर में शुगर ना होने दें, ब्लड प्रेशर की अधिकता ना होने दें, तो सारी बीमारियां हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में रहेंगी और सही समय पर उनका उपचार होने में इसमें मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल डॉक्टर दीपक शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, और समय समय पर लोगों को अपना जो हेल्थ का चेकअप है वो कराते रहना चाहिए, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, अच्छा खाना खाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें, तो आप ज़रूर एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM सामुदायिक रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने का और अपने दर्शकों तक मेरी बात पहुंचा सकने का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
3: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
4: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा, तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
3: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
2: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं।
3: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निशुल्क पहुंचाएगी।
2: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
2: शिशु की सही देखभाल से
3: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90

2.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: फिर
1: क्या
0: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
1: क्यों
0: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
1: क्या?

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं
1: समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं वही आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, खेती किसानी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। जो हमारे किसान बहन भाई खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहतर होती है, क्योंकि जब कभी खेती में घाटा हो जाता है तो पशुपालन से वो भरपाई हो जाती है और एक संतुलन है वो बना रहता है। इसीलिए खेती के साथ साथ पशुपालन करना बहुत जरूरी है। और किसान मित्रों, आपको तो पता ही है कि गाँव में रहने वाले जो हमारे किसान बहन भाई हैं खेती के साथ साथ अधिकतर पशुपालन से अच्छी खासी कमाई कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। आज पशुपालन व्यवसाय में अच्छी नस्ल के बछड़ा बछिया विभिन्न उद्देश्य से उनका पालन किया जा रहा है। जहां बछिया और पड़िया का पालन दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है तो वहीं बछड़े का पालन खेती संबंधित कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऐसे में इनके खान पान और रहन सहन का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बदलते मौसम का प्रभाव खेती के साथ साथ हमारे पशुओं पर भी पड़ता है और साथ ही साथ हमारे जो नवजात पशु हैं उनकी देखभाल करना तो बहुत जरूरी है। किसान मित्रों, गाँव में बेहतर आमदनी के लिए लोग दुग्ध उत्पादन की ओर तेजी से बढ़े हैं और इसमें अच्छी आय होने के कारण भारत में डेयरी उद्योग तेजी से बढ़ा है। कृषि के क्षेत्र में पुरुष वर्ग खेतों में काम कर अन्न उत्पादन में लगा रहता है तो हमारी जो महिला हैं वो खेती के अलावा पशुपालन में लगकर घर में समृद्धि लाने में लगी रहती हैं। आपने देखा होगा गांव में अधिकतर जो महिलाएं होती हैं वो ही पशुपालन का काम देखती हैं। किसान मित्रों, हमारी भारतीय महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति पाई जाती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कुछ ना कुछ करके घर को मजबूत करने में लगी रहती हैं। गांव में आय के बेहतर रास्ते ना होने के कारण महिलाएं दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लगी हुई हैं। गांव में पशुपालन के क्षेत्र में 70% महिलाएं लगी हुई हैं और पशुपालन कर दुग्ध उत्पादन में इन महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। सहभागिता को अपनाकर महिलाएं न केवल सशक्त हो रही हैं बल्कि देश के आर्थिक ढांचे को भी मजबूत कर रही हैं। किसान मित्रों, आज के दौर में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए डेयरी आय और रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। बात दुग्ध उत्पादन की करें तो लाखों भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी एक सदियों पुरानी परंपरा रही है। दुग्ध किसी भी अन्य कृषि वस्तु की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है। तो आपने जाना कि कितना जरूरी है खेती के साथ साथ पशुपालन करना। और किसान मित्रों, यहाँ पर आपको एक बात पर और गौर करने की जरूरत है कि खेती से तो हमें 3 महीने बाद 6 महीने बाद उत्पादन मिलता है लेकिन पशुओं से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। आजकल तो पशुओं के गोबर के कंडे भी बेचे जाते हैं और गोबर का बड़ा अच्छा खाद बनता है, वो भी हमारे किसान भाई प्लांट लगाकर उसको बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन करते हैं तो आपको और अधिक आर्थिक लाभ होता है। और जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब कभी आपको खेती में घाटा हो जाता है, कभी कोई फसल आपकी अच्छी नहीं हो पाती है या बाजार अच्छा नहीं मिल पाता है तो उसकी भरपाई हमारे पशु अपने उत्पादन से कर देते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही पशुपालन बेहतर आमदनी का स्रोत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं उपेंद्र राणा।

उपेंद्र राणा। किसान मित्रों, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन आमदनी का एक बढ़िया स्रोत बनके सामने आया है और बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई अपनी खेती के साथ साथ इस व्यवसाय की तरफ भी रुख कर रहे हैं और ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार भी कई सारी योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को मछली पालन की शुरुआत करने के लिए आर्थिक मदद भी प्रदान करती है। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। मछली पालन व्यवसाय में हमारे किसानों और युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। अगर कोई किसान भाई या कोई युवा मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो नीली क्रांति योजना का लाभ उठाकर अपनी आय को बढ़ा सकता है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक साथ सम्मिलित कर दिया गया और जिसका नाम रखा गया है नीली क्रांति योजना। इस योजना में मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य की मार्केटिंग, मछुआरा बीमा समेत मत्स्य विकास के सारे सेक्टरों को रखा गया है। नीली क्रांति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान की भी सुविधा दी गई है। इस योजना में जिसमें सामान्य वर्ग के व्यक्ति के लिए सरकार ने 40% अनुदान की सुविधा रखी है, वहीं एससी एसटी या महिला वर्ग के लिए सरकार ने 60% अनुदान की सुविधा रखी है। अगर किसी किसान भाई को इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना है तो वो अपने जिले के जनपदीय कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकता है। तो किसान मित्रों, ये तो जानकारी रही नीली क्रांति योजना की। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं तरुण बाल्यान और किस्सा रहेगा सरवर

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सरवर नीर के किस्से से ये रागनी, कलाकार थे तरुण बाल्यान। और किसान मित्रों, अब बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की, जो किसानों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से हमारे किसानों को स्केल की अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने में मदद करती है। हमारे सीमांत, छोटे और भूमिहीन किसानों को FPO के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ने में मदद मिलती है, जिससे हमारे किसान भाइयों की आय और आर्थिक मजबूती में सुधार हुआ है। ये छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करता है और विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करता है। FPO छोटे किसानों को एक साथ जोड़ते हैं और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वे अपने सदस्यों की उपज का एकत्रीकरण करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन हमारे किसान भाइयों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो किसान मित्रों, आपके पास भी अगर कोई किसान उत्पादन संगठन है तो आप उससे जुड़ सकते हैं, या फिर आप भी 10-20 किसान मिलकर के किसान उत्पादन संगठन बना सकते हैं और फिर इसके द्वारा जो लाभ मिलते हैं आपको, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, बलराम बैसला द्वारा गाए गए इसी उपदेश के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

से निकल रहे थे। मेहरबानों, कालिया ने कह दिया, हरिया तेने बहुत बड़ा अपराध किया, तेने अपनी ब्याही से और अपने मरे पुत्र पर कर ले लिया, इससे बड़ा अन्याय और अधर्म भला इस दुनिया में कौन सा होगा। लेकिन कालिया

महाराजा विश्वामित्र जिसने राज को लिया था और जिसने हरिश्चंद्र को भंगी के घर बिकवाया था और तारा रोहतास को रामलाल पंडित के यहाँ केवल 7 भार सोने के बदले, दोस्तों उसी ने रोहित को शराब बन के डस लिया और उसी ने आज तारा के मुंह पर खून लगा दिया और उसके आगे एक कलर का आधा शरीर कच्चा होया और आधे से रक्त बह रहा था। आज तारा को डायन बना दिया और उधर काले को आदेश दे दिया वहां के राजा ने काशी, काले इस डायन को मरवा दो, ये मानस खानी है, मेहरबानो आज हरिश्चंद के हाथ में खूनी तलवार

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए ये आहार। जो अपने जन्मजात बच्चों का अच्छा विकास देखना चाहती हैं, उन्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन आपके बच्चे को उचित मात्रा में सभी पोषण तत्व प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के पोषण तत्व की कमी से पीड़ित नहीं होने देता। स्वस्थ और पौष्टिक आहार केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि वो आपके स्तनपान की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने सामान्य आहार में उच्च प्रोटीन, कैल्शियम, पोषण तत्व और विटामिन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। साथ ही उन्हें तरल पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके सेवन से आपके बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण पोषण तत्व प्रदान हो सकते हैं। दूध पिलाने वाली महिला को पीना चाहिए दूध। आपके आहार में कैल्शियम को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए दूध आवश्यक है। यह आपके बच्चे की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी हड्डियों में उचित कैल्शियम बनाए रखता है। यह आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को पीना चाहिए अधिक पानी। स्तनपान कराने वाली माताओं को कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन स्तनपान के माध्यम से आपके शिशु के अंदर भी जा सकते हैं। कैफीन युक्त पेय के 3 कप से अधिक का सेवन करने से माताओं को नींद न आने की समस्या हो सकती है और आपके शिशु में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दूध पिलाने वाली माँ का भोजन। बच्चे के जन्म के बाद माँ आहार में खाए हरी पत्तेदार सब्जियाँ। स्तनपान कराने वाली माताओं को हरे पत्ते वाली सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ विटामिन और पोषण तत्व जैसे विटामिन ए और कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन आदि में समृद्ध होती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के अधिकांश पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए संतरा। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से माताएं संक्रमण से दूर रहती हैं और उनके बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को खाना चाहिए साबुत अनाज। साबुत अनाज फोलिक एसिड में समृद्ध होता है। साबुत अनाज सही तरह से कोशिका में वृद्धि के साथ साथ आपके बच्चों के मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करता है। फोलिक एसिड पूरक के रूप में चिकित्सक द्वारा एक बार देने की सलाह दी जाती है। साबुत अनाज में मौजूद फोलिक एसिड इन पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं खाएं मछली। सैल्मन मछली DHA से समृद्ध होती हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उच्च मात्रा में पाई जाती है। यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: Tuberculosis या TB किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट यानी SMFE क्षमता विकास और कौशल वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, एक खास सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है, यानी स्किल्स के बारे में. स्किल्स वो एक ऐसी कला है कि जिसमें चार चांद लगाकर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. आइए इसी संबंध में सुनो शारदा 90.8 FM स्टूडियो से निकलकर नोएडा के मोनामी फाउंडेशन पहुंचा है, जहां हमने उनके फाउंडर और जुड़े हुए जो टीम लीडर हैं, जो दूसरे सदस्य हैं, उनसे बात की कि आप किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आपको यहां ट्रेनिंग दी जाती है. आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर. आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM.
2: मैं हूं गगन आपके साथ और आज मैं स्टूडियो से निकलकर नोएडा में आया हूं. और आने का उद्देश्य, मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि विमेन एम्पावरमेंट की जो बातें हैं वो बातें हम करेंगे, उन महिलाओं के भविष्य की बात करेंगे जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनकी गाइडेंस की बात करेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को आगे लेकर जा सकती है. और इसी संबंध में मेरे साथ एक NGO है जिसका नाम है मोनामी फाउंडेशन, और इस फाउंडेशन से एक मेंबर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं अनुराग मैम. तो मैम, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है.
3: थैंक यू, नमस्कार सभी को.
2: इस फाउंडेशन के बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई, किस मकसद के साथ आप लोगों ने इसकी शुरुआत की.
3: ये इसकी शुरुआत 2015 में हुई मोनामी फाउंडेशन की, पर मेरे को आर्टिजन्स के साथ काम करते हुए लगभग 20 साल हो गए हैं और मैं क्राफ्ट में काम करती हूँ, काफ़ी सारे आर्टिजन्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, और मुझे लगा कि एक फाउंडेशन की ज़रूरत है जहाँ पर हम लोग और लोगों को अपने साथ जोड़ सकें, प्रोजेक्ट वाइज ही नहीं पर बल्कि एक लंबे समय तक काम करने के लिए हम निकले हैं. और एक अकेले काम करने के अलावा एक ग्रुप में काम करना बहुत अच्छा होता है, तो एक टीम हम बना रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम लोग आगे और इम्पैक्टफुल काम करें.
2: मैंने सुना है कि आपके साथ जो टीम मेंबर्स हैं, मेरा मतलब ये है कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं, वो माइग्रेंट हैं जिन्होंने पलायन किया है, तो ये जो पलायन हुआ ये लॉकडाउन के दौरान हुआ या उससे पहले वो आपके साथ जुड़ चुकी थी?
3: ये लॉकडाउन के टाइम हमने शुरू करा है जो ये प्रोजेक्ट हमारा अभी नोएडा में चल रहा है. हम कई सालों से NCR में काम कर रहे हैं माइग्रेंट महिलाओं से, क्योंकि हमें लगा कि माइग्रेंट महिलाएं ऐसी स्थिति में हैं कि वो ना घर से बाहर निकल सकते हैं, गांव से आकर के एक बहुत अजीब से सिचुएशन में रह जाती हैं कि ना बाहर जाकर के काम करने सकते हैं, बाहर जाने से डर लगता है, घर में बैठ के एक तरीके से बंध गई हैं, और इस बंदिश को हम किस तरीके से खोल सकते हैं. और उसको उन्होंने जो इतना सालों से काम करती हुई, उनका कोई अहमियत नहीं रह गई और अपने आप को सोचती भी नहीं कि कुछ अहमियत है उनमें, तो हम सोचते हैं कि इनको स्वयं सहायता समूह के द्वारा उनको हम आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है और ये हमने धीरे धीरे प्रोग्राम एक डेवलप करा। स्पेशली ये कोविड के टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा क्योंकि घर से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। आप मैं कोई प्रधानमंत्री तक किसी को बाहर जाने की वो परमिशन नहीं थी, तो क्या करते, घर पे बैठे। कई लोगों की नौकरियां चली गई, घर पे सभी बैठे थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। तो हमने जूम सेशन के द्वारा ये प्रोग्राम बनाया जहां पर हमने किट भेजे सबको, जिन लोगों ने अपने नाम लिखाए थे वो चाहते थे कि कुछ काम करें। घर पे बैठ के जो महिलाएं जिनको किट मिले उन्होंने जूम सेशन के द्वारा क्लासेस ली। जब उन्होंने ये क्लासेस ली, पहले 15 सेशन एक महीने में पूरे हुए और उसके बाद उन्होंने देखा कि एक नई चीज़ें वो बनाना सीख रहे हैं, उससे उनको बहुत प्रोत्साहन मिला। तो उन्होंने कहा हम और आगे आपके साथ क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा आप एडवांस ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक स्वयं सहायता समूह बनाना पड़ेगा, स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो सब डर गए कि बैंक कैसे जाएंगे, हमने कहा कोई बात नहीं हम बैंक से बात करेंगे। तो एक सेशन तो हमने बैंक मैनेजर के साथ भी रखा था,
2: बहुत अच्छा।
3: और बैंक मैनेजर आई, उन्होंने कहा आप डरते क्यों हो, वो भी हमारे जैसी एक महिलाएं थी और उन्होंने कहा मेरे भी छोटे बच्चे हैं पर मेरे को बैंक जाने में डर नहीं लगता। और बैंक मैनेजर ने जब ये कहा तो सारी महिलाएं इकट्ठा आई और उन्होंने जा करके अकाउंट खोला और फिर बैंक को कैसे मैनेज करा जाता है, पैसे को कैसे मैनेज करता है, ये एडवांस ट्रेनिंग में हमने सिखाया। क्योंकि कुछ कम उम्र की भी लड़कियां थी, उन्होंने कहा मैम हमें फेसबुक भी खोलना है, अपना अकाउंट खोलना है, कुछ फेसबुक पे ऑलरेडी थे। मैंने कहा ज़रूर, तो सबके फेसबुक अकाउंट खोले, ये भी शारदा यूनिवर्सिटी के द्वारा हमने करा। उन्होंने हमें बताया कि एक हम फेसबुक अकाउंट खोलना हिंदी में बनाते हैं और वो अपने आप फेसबुक अकाउंट, ईमेल आईडी और सबने ये खोला। तो एडवांस ग्रुप में उन्होंने ये ज़रूर करना होता है और हर थर्सडे को उनकी योगा क्लास होती है।
2: ओह ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
3: क्योंकि जब हम बैठ के कुछ क्राफ्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से हाथ थोड़े से जम जाते हैं या कहीं गले में गर्दन में दर्द हो रहा है या कुछ, तो हमने जब योगा क्लास शुरू करी तो हमें एक सेशन में तकरीबन 80 लोग तो आ ही जाते हैं योगा क्लास के लिए। तो इतने सारे लोगों को योगा क्लास कराना पॉसिबल नहीं था अगर हम एक जगह कराते।
2: मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, मुझे लगता है कि शायद ही कोई आपसे आपका पहलू बचा होगा। आपने जिस तरीके से कहा कि एडवांस ट्रेनिंग आप लोगों ने उन लोगों की कराई या यूँ कहें कि उन महिलाओं की कराई जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो काम कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ें अभी बाकी हैं जो हमें करना बाकी है? चाहे जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ बातों में कि चाहे डॉक्टर की क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ को हम किस तरीके से बेहतर बना के रख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट की बातें हैं, स्ट्रेस की बातें हैं, तो क्या लगता है कि इन पहलुओं को अभी आपको छूना बाकी है?
3: बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और भी करना चाहेंगे। कुछ भी अगर नई चीज़ें सीखी जाती हैं तो उसमें बहुत सारे बदलाव, कुछ एडवांस में कुछ चीज़ें बनाना, हर बार एक नया डिज़ाइन समझना, उस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाना और उसे प्रोडक्शन में ले जा के मार्केट तक ले जाना, एक जर्नी है। और उस जर्नी को ये एक जब नए कारीगर बने हैं जो नया शुरुआत करी है उसको एक तर तक ही समझ पाए हैं, इसको पूरी तरीके से समझना एक समय की बात है और एक्सपीरियंस की बात है। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोगों ने हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं उसको और हम एक दूसरी ट्रेनिंग कराएं। अभी मार्केटिंग ट्रेनिंग हुई है जो शारदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के हेल्प से हुई है, केवल 20 महिलाएं अभी जुड़ी हैं और हमारे पास 150 महिलाएं हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ऑलरेडी पूरी कर ली है।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं जिस कमरे में आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी कारीगरी यहाँ हुई है, और क्या ये जो कारीगरी हुई है तो इसकी भी आप लोगों ने पहले ट्रेनिंग दिया होगा उन लोगों को, और कितना समय लगता है उन चीज़ों को सीखने में, समझने में? और फिर आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग यहाँ डिज़ाइन करते हैं या यूँ कहें कि बनाते हैं?
3: तो हम जितने भी चीज़ें अभी क्रोशे में बना रहे हैं वो सारी कॉटन में बनी हैं। और ये ट्रेनिंग 15 दिन की बेसिक और फिर 20 दिन की एडवांस, पूरे टोटल 75 दिन कम से कम लगते हैं ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद उनको ऑर्डर देते हैं, जो ऑर्डर में जो सामान बनाया जाता है वो बाज़ार में लेकर के जाते हैं, जैसे दस्तकार बाज़ार है और अभी हमारा दस्तकार बाज़ार बेंगलोर में पूरा हुआ, ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर गए और लोगों ने बहुत पसंद करे हैं। तो ये मार्केटिंग लिंकेज काफ़ी ज़रूरी है कोई भी चीज़ें बनने के लिए, और हम चाहेंगे ये जितने भी हमारे जैसे क्रोशे के चीज़ें हैं, ब्लैंकेट्स हैं, रैटल्स हैं, अभी काफ़ी सारे नए रेंजेस हो रही हैं, हमारे साथ कुछ मधुबनी के आर्टिजन्स भी जुड़ गए हैं,
2: आई थिंक बिहार से जो लोग होते हैं,
3: काफ़ी सारे लोग मधुबनी के ही हैं और उन्होंने वो 15 साल की थी जो सबसे पहले उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन करा, जब उन्होंने शादी के बाद यहाँ पर नोएडा में आई, नहीं नोएडा आई और नोएडा में आकर के शादी के बाद उन्होंने काम पेंटिंग करती थी पर कुछ उनका कहीं पर बेचना या कुछ भी उसको काम करना आगे नहीं ले जा पाई,
2: वो सब तो कुछ आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म,
3: हमने एक दोबारा शुरुआत करी मधुबनी का, हमारे पास एक ग्रुप है, क्रोशे के ग्रुप हैं और जितने भी काम सारा कर रहे हैं उसको मिला के हमने काफ़ी बड़ी रेंज बनाई है जो दस्तकार बाजार लेके जा रहे हैं।
2: ठीक है, तो क्या जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो प्रोडक्ट आपके पास लेकर आते हैं, या यूँ कहें कि कुछ सैलरी बेस लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये जो क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया है?
3: ज़्यादातर जो भी ट्रेनिंग के टाइम स्टाइपेंड मिलता है और जो काम बताया जाता है तो वो ट्रेनिंग का स्टाइपेंड के तरीके से होता है। ट्रेनिंग का जो भी मटेरियल है वो सारा HCL फाउंडेशन ने हमें हेल्प करा है इसको ट्रेनिंग को आगे ले जाने के लिए और इतने सारे लोगों को जोड़ने के लिए। तो एक HCL फाउंडेशन की एक विजन थी कि इतने सारे माइग्रेंट लेडीज़ हैं जो नोएडा में हैं और ये हम इनके साथ हम ये आगे ले जा सके। हमारे साथ बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, रिमोट चैंपियंस हमने आगे बढ़ाए हैं, इन्हीं महिलाओं में से हमारे 3 रिमोट चैंपियन हैं, एक मधुबनी का जो बना रही हैं, एक जो क्रोशे का आगे कर रही हैं और एक जो सैंपल बनाने में नए प्रोडक्ट बनाने

0: महिला सशक्तिकरण में?
1: हम फैसिलिटेटर्स हैं, हम मुनामी फाउंडेशन ने कुछ भी ऐसा काम हम नहीं कर रहे हैं जो मुफ्त का है या कुछ ऐसा जो हम सोचते हैं कि हम अपनी तरफ से डोनेशन कर रहे हैं, ये डोनेशन नहीं है। सब बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मशक्ति होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हर महिला आगे बढ़ के काम करे, मुफ्त का कुछ भी नहीं है। और इसीलिए वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए कि हम लोग कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, हम सब अपने लिए काम कर रहे हैं। और इसी चीज़ को हम हर महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ती है उसे ये समझाते हैं कि आप अपने लिए काम कर रही हैं, मेरे लिए नहीं।
0: सही कहा।
1: और एक फाउंडेशन में, एक टीम में, एक हम सब इकट्ठा जोड़
0: एक फैमिली परिवार,
1: एक परिवार के जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और एक टीम में जब तक कोलैबोरेशन नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते।
0: मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आपने डिस्कस किया कि मार्केटिंग की बात हुई और कुछ अलग तरीके से बातें हुई, शारदा यूनिवर्सिटी भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आज मीडिया आपके साथ है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? शारदा यूनिवर्सिटी पर रेडियो आपका ये ऑनियर होने जा रहा है और अभी हमने शारदा टीवी के लिए भी आपसे बातें की, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप?
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इतना, हमें अच्छा लगा शारदा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ करके, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी जैसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बच्चे हैं, जब जहाँ यंग माइंड्स हैं और वहाँ पर ये इस तरीके से हम कोलैबोरेशन कर पा रहे हैं एक एनजीओ के साथ, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट के साथ, तो आई थिंक इसी कोलैबोरेशन को हमें आगे ले जाना है। सो थैंक यू सो मच शारदा यूनिवर्सिटी।
0: आपसे अगर कोई कनेक्ट होना चाहता है, आपसे कोई जुड़ना चाहता है, तो आपका वो एड्रेस या कोई फोन नंबर या सोशल साइट पर वो कहाँ विजिट करे ताकि वो आपसे संपर्क कर पाए और उन लोगों का भी भला हो सके?
1: जैसे हमने कहा कि हमारा फेसबुक अकाउंट हमारी हर महिला का है, तो इसलिए हमारा भी है। मुनामी फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर जाइए, प्लीज लाइक करिए। हमारा वेबसाइट है munamifoundation.com, वहाँ पर जाइए और देखिए, क्रोशे का सबसे बड़ा ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो ज़रूर आइए। और बहुत अच्छा लगेगा अगर नए बच्चे यहाँ पर हमारे साथ शारदा यूनिवर्सिटी के और भी आएँ। हमारे साथ ऑलरेडी इंटर्न में इंटर्नशिप कर रही हैं जेबा, और हम चाहेंगे कि और भी बच्चे आएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई कौशल कला है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहती हैं, बेहतर करना चाहती हैं अपने लिए, अपनी समाज के लिए, फैमिली के लिए, तो इस फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं और सोशल साइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ी रही फाउंडर अनुराग जी, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ और आज एक प्रोग्राम के तहत मैं स्टूडियो से निकलकर बाहर आया हूं। ये नोएडा है और नोएडा में मोनामी फाउंडेशन है और यहां मेरे साथ अब जुड़ रही हैं माधुरी जी और साथ ही साथ अनु जो कि टीम लीडर हैं। तो सबसे पहले माधुरी, आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: मोनामी किस तरीके से काम करती है और आप यहाँ किस तरीके से काम करती हैं, ये थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, हमारे लिसनर्स जानना चाहते हैं।
1: एक्चुअली ये मोनामी फाउंडेशन है, मतलब मोनामी का मीन्स ही है फ्रेंड, तो हम लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। हम लेडीज़ जो होती हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और फिर हम उनसे प्रोडक्शन करवाते हैं और उन्हें हम काम देते हैं, घर बैठे बैठे सिखाते हैं और चीज़ें देते हैं, सारा चीज़ हम लोग खुद से प्रोवाइड करते हैं। वो सिर्फ घर बैठ के सीखती हैं और वो पैसे कमाती हैं, तो ये चीज़ है। और मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट करती हूँ सारा लेडीज़ का, जितना भी प्रोसेस होता है उनका, कैसे सामान दिलवाना है, क्या क्या सारा लेके जाना है, उनके सारे डॉक्यूमेंट कि वो हम लोगों के पास वेरीफाइड रहे, सारी चीजें वो उनका सारा कुछ मैनेजमेंट मैं करती हूँ यहाँ पे।
0: अनु भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। अनु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है टीम लीडर का है, तो ये जो काम जिस तरीके से माधुरी जी ने मुझे बताया, आप किस तरीके से यहाँ काम करती हैं और क्या देख रेख करती हैं?
2: सर, मैं यहाँ एक साल से काम करती हूँ। मैं पहले मैं ग्रुप मेंबर थी, मैंने सीखा पहले यहाँ पे, उसके बाद से अभी मैं इसके अंदर में मोनामी फाउंडेशन के अंदर से मैं जुड़ गई हूँ। तो मेरा काम है, मैं सबको मतलब लेडीज़ों को, महिलाओं को जोड़ती हूँ इस ग्रुप में, वो भी सीखती हैं, वो भी आगे बढ़ रही हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, सब घर बैठे काम कर रही हैं। मतलब मैंने ट्रेनिंग ली, अब लोगों को मैं ट्रेनिंग दिलवाती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि आप भी इनके साथ जुड़े, आप भी काम करें। जितनी भी महिलाएं हैं जो घर बैठे हैं वो सब यही सब काम करती हैं, तो मैं उनको जोड़ती हूँ।
0: ग्रेट। स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट कौशल दक्षता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो मैं बात कर रहा हूँ मोनामी फाउंडेशन के तहत, हमारे साथ जो ग्रुप लीडर है माधुरी हैं और साथ ही साथ अनु भी जुड़ी हुई हैं, और इसके अंतर्गत करियर की बातें होती हैं माधुरी, कुछ गाइडेंस भी आप लोग देते हैं, तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर क्या है, आपका करियर क्या है?
1: मैं एक बैंक में जॉब के लिए अप्लाई करती रहती हूँ, मतलब बैंक में मेरा बैंकिंग फील्ड है और मैं बैंक में ही आगे जाके, पर एक्चुअली मेरा यहाँ पे जुड़ने का भी एक मोटिव है, बिकॉज मेरा मतलब हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारे पीछे एनजीओ था, तो हम लोग हमेशा अपनी स्कूल की खिड़की से उस एनजीओ को देखते थे, तो हमेशा से शुरू में से मन में रहा था, क्योंकि वहाँ की हम चीज़ें देखते थे कि क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं लोगों को, तो वो चीज़ देख के मेरा हमेशा मन में रहता था या तो मैं खुद का एक एनजीओ खोलूं या फिर मैं किसी एनजीओ में काम करूं। फिर मैंने मतलब सोचा इस बारे में, तो फिर मेरे को ये एनजीओ मिला, तो फिर इसमें फिर मैंने यही सोच के कि मैंने अपनी फील्ड को एक तरफ रखा कि क्या कहते हैं एमकॉम, ठीक है वो मैंने किया है, उसको भी मैं कभी गिव अप नहीं कर रही, मैं उसे कंटिन्यू करूंगी, पर यह था कि मोनामी फाउंडेशन की एक फाउंडेशन में काम करने का मौका मिलेगा, चीज़ों को जानने का अलग नज़रिया बन जाता है, और आज को शायद मेरा नज़रिया बन भी गया है कि एक ये हेल्प होती है लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, बहुत चीज़ें हम समझाते हैं सिखाते हैं, तो उससे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इस फाउंडेशन में काम कर रही हूँ, और अगर अच्छा होता है लाइफ में तो कोर्स मैं उसे पिक करूँगी और इसे कर सकती हूँ।
0: ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि समाज के साथ आप जुड़ी हुई हैं और जो समाज की एक धारा है उस धारा में आप बह रहे हैं, और आत्मनिर्भर जो भारत है इस वक्त जो एक सोच है उस सोच के साथ ये फाउंडेशन और आप लोग चल रहे हैं। अनु, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ गाइडेंस दी जाती है कि जो आपकी कौशल है वो आगे निकल कर आए, तो कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको यहाँ समय समय दी जाती है?
2: सर, पहले तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, जब मैं जुड़ी यहाँ पे तो मुझे बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिली जो मुझे कभी नहीं पता था, जैसे कि मैं बैंक में नहीं जा पाती थी, मुझे बैंक के बारे में नॉलेज नहीं था, बैंक के बारे में पता है मैं कुछ भी कर लेती हूँ बैंक में जाके, बाहर में कहीं कहाँ जाना है मुझे घर से पता ही नहीं था, कहाँ का कौन सा ऑटो है, ऊबर यूज़ करना, कुछ भी। और शारदा ट्रेनिंग भी हम लोगों को मिली शारदा यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर भी दो टीचर ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया बैंकिंग के बारे में, हमें ग्रुप लीडर का मतलब क्या काम होता है, कैसे हमें सबके साथ जुड़ के रहना है, कैसे हम किसको समझा सकते हैं, आगे बता सकते हैं, छोटी सी चीज़ को हम कैसे बड़े कर सकते हैं, यही सब हमें बहुत कुछ यहाँ पे नॉलेज मिली जो हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था।
0: क्या बात है, मैं कह सकता हूँ कि एक महिला सशक्तिकरण का जो आपका फाउंडेशन है मोनामी फाउंडेशन बहुत एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ एक छत के नीचे दूर दराज से महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, काम कर रही हैं, काम सीख रही हैं और अपने आप को आगे लेकर जा रही हैं। सो फाइनली आप कुछ अगर कहना चाहती हैं उन महिलाओं को जो घर पर हैं, आगे निकल कर आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, कुछ समाज की बंदिश हैं कि जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाती हैं, तो माधुरी आपका क्या कहना है?
1: मैं ये कहूँगी कि इससे जुड़े रहे हैं और हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप घर से निकलिए, हम आपको घर पे ही बैठे बैठे ट्रेनिंग देंगे, सारी चीज़ें आपको घर पे ही प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपकी फैमिली है बैरिकेड्स लगाती है, आपको नहीं निकलने देती है, तो हम आपको नहीं बोल रहे कि आप यहाँ आइए, आपको घर बैठे सब कुछ मिलेगा, आपको इनकम भी होगी, और जिससे आप कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई इस इनकम से अपना घर चला सकता है, पर एटलीस्ट अपनी कुछ चीज़ें जो होती हैं पर्सनल चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, वो ख्वाहिशें ज़रूर पूरी कर सकता है। और इसके लिए आपको हमसे जुड़ना चाहिए, और हम आपको नहीं बुला रहे हैं, ना ही हमें आपके कोई फोर्स है, आप घर बैठे सिर्फ फोन से ट्रेनिंग लीजिए और अपनी इनकम कीजिए, सिंपल।
0: क्या बात है अनु, आपका क्या नजरिया है?
2: सर मैं भी यही कहूंगी, जो घर बैठी लेडीज है मेरी तरह, जैसे मैं भी पहले घर बैठी ही थी तो मैंने भी स्टार्ट किया ये, तो उन लोगों को भी स्टार्ट करना चाहिए और ये ट्रेनिंग लेना चाहिए सभी को।
0: कहने का आशय लिसनर्स ये है कि ये यहाँ से सीखती हैं, एक कौशल कला को इन्होंने विकसित किया है और खुद के लिए कमा रही हैं और समाज की जो एक भागीदारी है उसमें योगदान दे रही हैं। कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत वाली जो बातें हैं वो यहाँ मुझे इस मोनामी फाउंडेशन में देखने को समझने को मिल रही हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, माधुरी एंड अनु, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
0: ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा? 01204060205 पर कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, मेरी यानी गगन के साथ।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। SMFE क्षमता विकास और कौशल वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने बातें की स्किल्स के विषय में, कौशल कला के विषय में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा को आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर आप विशेषकर एक महिला हैं, तो अपने पंखों को उड़ान दीजिए, अपनी सोच को आगे लेकर जाइए और जो बंदिश है उनको तोड़कर घर से निकलिए, कुछ अच्छा करिए, बेहतर करिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। जब मैंने इन महिलाओं से बातें की तो कुछ ऐसी ही दिक्कतें, परेशानियां इनके सामने थी, लेकिन आज वो अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और जिससे वो अपना पालन पोषण तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों का भी अच्छी तरीके से ख्याल रख पाती हैं और वहीं पुरुषों के साथ वो समाज में कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
1: माँ जी, मुझे टीबी है।
0: टीबी? और छुपा कर रखा?
1: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
0: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें।
2: टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है, फाइबर कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है, इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि पुस्तिका पर आधारित है।
1: पृष्ठ संख्या 103, भाग 3, मानव सेवाओं में कार्य करना। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ बच्चे मानव सेवाओं पर कार्य कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 104, मानव सेवा का तात्पर्य है लोगों की सहायता करना और उनके साथ विभिन्न तरीकों से संवाद स्थापित करना। मानव सेवाओं में कार्य करने पर आधारित परियोजनाएं आपको ये सीखने में सहायता करेंगी कि लोगों के साथ कैसे काम करना है। आप अपने परिवार और अन्य लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित परियोजनाओं का चयन कर सकते हैं। आप विभिन्न विषयों पर रोचक वीडियो और ऑडियो क्लिप बना सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार के लिए बजट बनाना, लोगों के हाथों पर मेहंदी लगाना या एक कॉमिक बुक बनाना। ये आप पर निर्भर है कि आप अपने साथियों के साथ क्या कल्पना करते हैं। इस खंड में परियोजनाओं के दो उदाहरण दिए गए हैं। आपको केवल एक परियोजना ही चुननी होगी। आप इनमें से किसी एक परियोजना का चयन कर सकते हैं अथवा अपने शिक्षक की सहायता से अपनी पसंद की परियोजना तैयार कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 105, परियोजना 5, विद्यालयी संग्रहालय। यह परियोजना संग्रहालयों के विषय में आपकी जानकारी या समझ समृद्ध करने में सहायक होगी और आप कलाकृतियों को एकत्र करके और उनका वर्णन करके अपना स्वयं का संग्रहालय बनाएंगे। परियोजना पर कार्य करने के पश्चात आप इन कार्यों को करने में सक्षम होंगे। संग्रहालयों तथा कलाकृतियों को जानने में, किसी स्थल संग्रहालय या आभासी संग्रहालय वर्चुअल का अवलोकन करने में, अपना स्वयं का इतिहास जानने में, कलाकृतियों को पहचानने और प्रस्तुतियां तैयार करने में, कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करने में, आगंतुकों से प्रतिपुष्टि लेने में। चित्र 5.1, विद्यालयी संग्रहालय स्थापित करना। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ छात्र छात्राएं एक विद्यालयी संग्रहालय स्थापित कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 106, आपने सामाजिक विज्ञान में इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए कई स्रोतों के बारे में सीखा है। इन स्रोतों में मानव द्वारा बनाई गई कलाकृतियां अथवा वस्तुएं हैं जो पुरानी, अनोखी और सुंदर हैं। ये हमारी परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। ये कलाकृतियां प्राचीन हो सकती हैं या वर्तमान में हमारे जीवन और समाज का हिस्सा हो सकती हैं। संग्रहालय वो स्थान है जिसमें कलाकृतियां रखी जाती हैं। अपने इतिहास और संस्कृति को समझने में संग्रहालय हमारी सहायता करते हैं। चित्र 5.1, उनसे हमें पता चलता है कि प्राचीन लोग क्या पहनते थे, किस तरह का काम करते थे, वे किस तरह की कलाकृतियां बनाते थे, पेंटिंग और मूर्तियां, और उन्होंने क्या लिखा, पांडुलिपि आदि। संग्रहालय हमें अपने मन में अतीत को संजोने और उन वस्तुओं को देखने में सहायता करते हैं जिन्हें हम अन्यथा कभी नहीं देख पाते। संग्रहालय हमें देश और दुनिया के विभिन्न समूहों के लोगों की वर्तमान संस्कृति और कार्य के बारे में जानने में भी सहायता करते हैं। वे कला, परंपराओं, वास्तुकला और विज्ञान से संबंधित कलाकृतियां प्रदर्शित करते हैं। चित्र 5.2, भारत में स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र अथवा संग्रहालय हमें उन वस्तुओं के बारे में जानकारी देते हैं जो वस्तुएं अब अस्तित्व में नहीं हैं, जैसे डायनासोर। संग्रहालय उन वस्तुओं के विषय में भी जानकारी देते हैं जिनकी हम भविष्य में अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ अनोखी वस्तुएं भी हैं जो हमारी सोच या जानकारी से परे हैं, जैसे कि दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पानी पर घूमने वाली 1200 किलोग्राम की ग्रेनाइट गेंद। चित्र 5.2, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित जनजातीय संग्रहालय में विभिन्न जनजातियों की पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ दो चित्र दिए गए हैं जिनमें भोपाल में स्थित जनजातीय संग्रहालय में विभिन्न जनजातियों की पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति को दिखाया गया है। पृष्ठ संख्या 107। जहां विज्ञान संग्रहालय मुख्य रूप से विज्ञान से संबंधित अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं सामान्य संग्रहालय विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित करते हैं जिनमें पारंपरिक वस्त्र और उनको पहनने की शैली सम्मिलित होती है। कुछ संग्रहालयों में जानवरों के अवशेषों को संरक्षित करके प्रदर्शित किया जाता है। क्या आपके घर में पारंपरिक वस्तुएं हैं जिन्हें संग्रहालय में प्रदर्शित किया जा सकता है? उन्हें अपने आसपास ढूंढिए और कक्षा में लाइए। यदि आप इन कलाकृतियों को कक्षा में नहीं ला सकते हैं तो उनकी तस्वीरें या चित्र ले लीजिए और इन्हें अपने विद्यालयी संग्रहालय का हिस्सा बनाएं। चित्र 5.3 किसामा हेरिटेज विलेज में ओपन एयर संग्रहालय है जिसमें नागालैंड की विभिन्न जनजातियों के घर प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें प्रत्येक घर का एक अनोखा डिजाइन है। मैं क्या कर पाऊंगा, मैं क्या कर पाऊंगी, परियोजना कार्य करने के पश्चात आप इस पृष्ठ पर लिखित कार्य करने में सक्षम होंगे। एक, आप ये वर्णन कर पाएंगे कि संग्रहालय इतिहास और परंपराओं को कैसे संरक्षित करते हैं। दो, उन कलाकृतियों की पहचान कर सकेंगे जो आपके और आपके साथियों के लिए रुचिकर हों। तीन, अपने साथियों के साथ एक विद्यालयी संग्रहालय बना पाएंगे। चार, प्रस्तुति के विभिन्न रूपों का उपयोग करके कलाकृतियों का इतिहास प्रस्तुत कर पाएंगे। मुझे किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? बिंदु एक, स्थानीय रूप से एकत्रित कलाकृतियां या उनके चित्र जो पुराने एवं सुंदर या आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो। बिंदु दो, भंडारण डिब्बे और प्रदर्शन डिब्बे। बिंदु तीन, सफाई ब्रश और कपड़ा। बिंदु चार, लेबल बनाने के लिए चार्ट पेपर या कार्ड। पृष्ठ संख्या 108। बिंदु पांच, मार्कर, स्केच पेन, ड्राइंग पेंसिल, कलर पेन और कैंची। बिंदु छह, प्रस्तुतिकरण के लिए कंप्यूटर और प्रोजेक्टर। बिंदु सात, अन्य उपकरण और सामग्री। मैं स्वयं और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखूं? बिंदु एक, हमारी विरासत हमारे गौरव और सम्मान का स्रोत है। इसे संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। कलाकृतियों का ध्यान रखा जाना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह की क्षति से बचाने के लिए संजोकर रखना चाहिए। बिंदु दो, किसी संग्रहालय की यात्रा के दौरान कलाकृतियों से सीधे संपर्क करने से बचें क्योंकि वे संवेदनशील सामग्री से बनी हो सकती हैं। बिंदु तीन, कृपया संग्रहालय में लगे निर्देश पट्ट पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन कीजिए। आपने सामाजिक विज्ञान में सिंधु सरस्वती सभ्यता के विषय में पढ़ा है। आपने धौलावीरा चित्र 5.4 के विषय में भी पढ़ा है। भारत के मानचित्र पर धौलावीरा स्थान को खोजिए। पुरातात्विक स्थल ऐसे स्थल हैं जहां प्राचीन मानव जीवन के साक्ष्य संरक्षित हैं। इन स्थलों की खुदाई पुरातत्वविदों द्वारा की जाती है। वे इन स्थलों की सावधानी पूर्वक खुदाई करते हैं और जो कलाकृतियां एवं अन्य अवशेष सामने आते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। ये कलाकृतियां हमें ये समझाने में सहायता करती हैं कि इन स्थलों पर कई वर्षों पहले किस प्रकार की सभ्यताएं अस्तित्व में थीं। खुदाई के दौरान प्राप्त वस्तुओं को स्थल के निकट स्थित संग्रहालय में रखा जाता है। चित्र 5.4, किले के पूर्वी द्वार पर प्रहरी कक्ष, धौलावीरा। यहाँ एक चित्र है जिसमें धौलावीरा स्थित किले के पूर्वी द्वार पर प्रहरी कक्ष दर्शाया गया है। आरंभ करने से पहले मुझे क्या जानने की आवश्यकता है? अपने घर और आसपास में ध्यान से देखिए। उन 5 कलाकृतियों की सूची बनाएं जो आपको रोचक लगती हैं, क्योंकि वे आपके लिए या आपके परिवार के लिए पुरानी या विशेष हैं। उदाहरण के तौर पर पुराने सिक्के, टेलीफोन, बर्तन, टिकट, लकड़ी की नक्काशी, फर्नीचर, पत्थर की नक्काशी, शिलालेख, पत्थर या गुफाओं अथवा इमारतों की दीवारों पर खुदे हुए लेख, प्राचीन एवं धार्मिक पांडुलिपियां, मूर्तियां, रेडियो, ग्रामोफोन, कैमरा, चश्मे, लकड़ी की लाठी, प्राचीन पुस्तकें,

अथवा वर्चुअल संग्रहालय भ्रमण। आप भारत के संग्रहालयों का आभासी भ्रमण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसे इंटरनेट पर खोजने के लिए संस्कृति मंत्रालय जमा वर्चुअल म्यूजियम जैसे शब्दों का उपयोग कीजिए। चित्र 5.5 भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित वेबसाइट का स्क्रीन ग्रैब दिया गया है। संग्रहालय की संग्रहित सामग्री पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल लेंस या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR का उपयोग कीजिए। इसके साथ ही आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि गूगल लेंस ने टूर के दौरान आपकी किस प्रकार से सहायता की। इंटरनेट सुरक्षा। इंटरनेट का उपयोग करते समय अपने शिक्षक से सहायता लीजिए। सावधान रहें कि कुछ भी अपलोड या डाउनलोड न करें, साथ ही व्यक्तिगत जानकारी भी किसी के साथ साझा न करें। पृष्ठ संख्या 110। संग्रहालय का भ्रमण करते समय संग्रहालय के लेआउट और प्रमुख प्रदर्शनियों को ध्यानपूर्वक देखिए एवं समझने का प्रयास कीजिए। संग्रहालय के बारे में जानने, प्रदर्शनियों का अवलोकन करने, सूचना पट पढ़ने और जांचने के लिए पर्याप्त समय लीजिए। ये भी देखिए कि क्या वहां सहभागी गतिविधियां हो रही हैं, जैसे प्रदर्शनियों के कुछ हिस्सों को उजागर करना, कुछ हिस्सों को हिला डुला कर देखना या कोई प्रश्नोत्तरी जिसमें आप भाग ले सकते हैं आदि। यदि संभव हो तो अपने अवलोकन की चर्चा किसी विशेषज्ञ जैसे संग्रहालय की कलाकृतियों आदि की देखभाल करने वाला व्यक्ति, क्यूरेटर या स्थानीय इतिहासकार आदि के साथ कीजिए और अपने प्रश्न पूछिए। दी गई जानकारी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. संग्रहालय में आपने सबसे रोचक प्रदर्शनी कौन सी देखी? खाली स्थान। 2. आपको ये प्रदर्शनी रोचक क्यों लगी? खाली स्थान। 3. एक ऐसी प्रदर्शनी का वर्णन कीजिए जिसका हमारे जीवन में आज भी महत्व बना हुआ है। खाली स्थान। गतिविधि 2. अपने परिवार और क्षेत्र का इतिहास जानिए। आरंभ करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप जिस स्थान पर रहते हैं और संबंधित परिवार की गतिविधि के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। दिए गए प्रश्न इसमें आपकी सहायता करेंगे। 1. क्या आपके गांव या कस्बे या शहर का कभी कोई दूसरा नाम था? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 111। 2. क्या आप जानते हैं कि शहर की स्थापना कब हुई थी? यदि हाँ तो वर्ष लिखिए। खाली स्थान। 3. आपका परिवार मूल रूप से कहां से आया था? खाली स्थान। 4. क्या आपकी कोई पारिवारिक परंपराएं या रीति रिवाज हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं? खाली स्थान। 5. क्या गांव या कस्बे या शहर से जुड़ी कोई स्थानीय कहानियां या परंपराएं हैं? उदाहरण के लिए क्षेत्र के बारे में कोई कहानी, इतिहास से कोई संबंध, वर्ष का कोई भी समय जब बहुत से लोग घूमने आते हैं आदि। अपने गांव या कस्बे या शहर से जुड़ी कहानी या परंपरा के बारे में लिखिए। खाली स्थान। 6. क्या आपके गांव, शहर या कस्बे में कोई ऐतिहासिक स्मारक स्थल या इमारतें हैं? यदि हाँ तो उनमें से किसी एक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 112। 7. क्या आपने कोई पुराना संस्थान या स्मारक देखा है? यदि हाँ तो ये क्यों प्रसिद्ध है? खाली स्थान। 8. आपके घर में सबसे पुरानी कलाकृतियां कौन सी हैं? उनके नाम लिखिए। खाली स्थान। गतिविधि 3. कलाकृतियों को पहचानना और उनके बारे में जानना। अपने घर में कम से कम 5 कलाकृतियों

0: की पहचान कीजिए और उनके बारे में तालिका 5.1 में लिखिए। तालिका 5.1 कलाकृतियों का विवरण। प्रश्न, कलाकृति 1, कलाकृति 2, कलाकृति 3, कलाकृति 4, कलाकृति 5। कलाकृति क्या है? खाली स्थान। इसका स्वामी कौन है? खाली स्थान। ये कितनी पुरानी है? खाली स्थान। क्या आप इसे कक्षा में लाएंगे या इसका कोई चित्र लाएंगे? खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 113। ध्यान दीजिए, यदि आप कक्षा में चित्र लाने की योजना बना रहे हैं तो सुनिश्चित कीजिए कि आप इन चित्रों को विभिन्न कोणों से लें, ताकि चित्रों को देखने वाला कोई भी व्यक्ति कलाकृति को ऐसे देख सके जैसे वो उसके सामने हो। गूगल लेंस का उपयोग करना। आप AI टूल जैसे गूगल लेंस का उपयोग कर वस्तुओं और स्मारकों या स्थलों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस स्मार्टफोन कैमरा को उन पर इंगित करना होगा। गूगल लेंस कलाकृतियों, ऐतिहासिक कलाकृतियों और प्रसिद्ध स्थलों के बारे में भी जानकारी प्रदान कर सकता है, जिससे हमें अपनी कला और संस्कृति के बारे में अधिक जानने का अवसर मिलता है। संग्रहालयों के आभासी भ्रमण अथवा वर्चुअल टूर से पुराने टिकट अर्थात स्टाम्प और सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई अन्य ऐप भी उपलब्ध हैं। आप संग्रहालय में प्रदर्शित की गई किसी कलाकृति को चुन सकते हैं, उसके इतिहास और विकास को दिखाते हुए एक काल क्रम बनाइए जिसमें ये सम्मिलित हो कि इसका आम तौर पर कब उपयोग किया जाता था और यदि अभी भी इसका उपयोग हो रहा है तो कैसे किया जा रहा है। आप इससे जुड़ी किसी महत्वपूर्ण घटना का विवरण भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि किसी रिश्तेदार ने इसे दादा दादी की शादी के अवसर पर उपहार के रूप में दिया था और ये गांव में अपनी तरह की पहली वस्तु थी, जैसे एक पुराना रेडियो या कैमरा। चित्र 5.6 पुरानी पीतल की घंटियां। यहां एक चित्र दिया गया है जिसमें पुरानी पीतल की दो घंटियां प्रदर्शित की गई हैं। गतिविधि 4, संग्रहालय के लिए कलाकृतियों का चयन करना। आप अपने सभी साथियों के साथ मिलकर 5 कलाकृतियों का चयन कीजिए जो संग्रहालय में प्रदर्शनी का हिस्सा होंगी। आपको ये चयन सावधानी पूर्वक करना होगा और ये भी बताना होगा कि आपने इन कलाकृतियों को क्यों चुना और अन्य को क्यों नहीं। चित्र 5.7 1950 के दशक का पुराना चल स्त्री यानी ट्रैवलिंग आयरन जो बिजली से संचालित होती थी। पृष्ठ संख्या 114। चित्र 5.8 पुराने रेलवे लालटेन। यहां एक चित्र में पुराने रेलवे लालटेन प्रदर्शित किए गए हैं। चित्र 5.9 1998 के वर्ष का मोबाइल फोन। यहां एक चित्र में 1998 के वर्ष का एक मोबाइल फोन प्रदर्शित किया गया है। सभी कलाकृतियों का अपना महत्व है, भले ही आपकी कलाकृति प्रदर्शनी के अंतिम चरण में सम्मिलित ना हो, लेकिन आप स्थानीय इतिहास और संस्कृति के बारे में जानेंगे। ये प्रश्न आपको कलाकृतियों को अंतिम रूप देने में सहायता करेंगे। 1, आप प्रदर्शनी के लिए अंतिम 5 कलाकृतियों का चयन कैसे करेंगे? कलाकृति चुनते समय आप किन कारकों को ध्यान में रखेंगे? खाली स्थान। चित्र 5.10 1960 के दशक की शुरुआत के कैमरा, फ्लैश और लेंस। यहां एक चित्र में 1960 के दशक की शुरुआत के कैमरा, फ्लैश और लेंस प्रदर्शित किए गए हैं। चित्र 5.11 1940 के दशक की पीतल की छलनी। यहाँ एक चित्र में 1940 के दशक की पीतल की छलनी प्रदर्शित की गई है। पृष्ठ संख्या 115। पुराने दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट को पढ़ना या अनुवाद करना। गूगल लेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एडोब स्कैन और टेक्स्ट फेरी जैसे सभी एआई टूल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी ओसीआर का उपयोग करके छवियों से शब्द या पाठ यानी टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। आप उनका उपयोग पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए कर सकते हैं जिन्हें पढ़ना कठिन है। इसके साथ ही दस्तावेजों का उस भाषा में अनुवाद करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं जिसे आप समझते हैं। चित्र 5.12, अनुवाद के लिए एआई टूल का उपयोग। यहाँ एक चित्र है, इसमें अनुवाद के लिए एआई टूल का उपयोग करना समझाया गया है। यदि आप विद्यालयी संग्रहालय की कलाकृतियों में पुराने दस्तावेजों को सम्मिलित करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सहायक होगा। 1. स्मार्टफोन पर गूगल ऐप डाउनलोड कीजिए और खोलिए। 2. सर्च बार में गूगल लेंस आइकन ढूंढिए और उस पर क्लिक कीजिए। ये गूगल लेंस को सक्रिय यानी एक्टिव करता है। 3. अपने कैमरे को उस पाठ्य सामग्री की ओर इंगित कीजिए जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। बेहतर परिणामों के लिए सुनिश्चित कीजिए कि पाठ्य सामग्री स्पष्ट और केंद्र यानी फोकस में हो। पाठ्य सामग्री के जरूरी हिस्से को चयनित करने के लिए हाइलाइटर का उपयोग कीजिए। 4. आपके आवश्यक कार्य के अनुसार पढ़ने के लिए गूगल लेंस स्वचालित रूप से पाठ्य सामग्री को पहचानने और आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा जिससे उसे पढ़ना सुगम हो जाएगा, विशेषकर जटिल स्थितियों जैसे छोटे फॉन्ट में। कॉपी करने के लिए गूगल लेंस पर होमवर्क ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आपको कई विकल्प दिखाई देंगे जैसे कॉपी टेक्स्ट या कॉपी टू कंप्यूटर। पाठ्य सामग्री को अपने क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए कॉपी क्लिक कीजिए। इसके बाद आप इसे नोट्स या दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जैसे किसी अन्य ऐप में पेस्ट कर सकते हैं। अनुवाद करने के लिए स्क्रीन के निचले भाग में अनुवाद विकल्प देखिए, उस पर क्लिक कीजिए। इसके पश्चात इच्छित भाषा चुनिए जिसमें आप पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना चाहते हैं। लेंस अनुवादित पाठ्य सामग्री को मूल पाठ्य सामग्री के साथ प्रदर्शित करेगा। पृष्ठ संख्या 116। आपके द्वारा चुनी गई प्रत्येक वस्तु का एक चित्र बनाइए या एक चित्र चिपकाइए। इस पृष्ठ पर नीचे दी गई तालिका 5.2 में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उपयोगिता का संक्षिप्त विवरण लिखिए। तालिका 5.2, पहचानी गई कलाकृतियों का विवरण अंकित करना। वस्तु, चित्र, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उपयोगिता, क्या इसका वर्तमान में भी उपयोग किया जा रहा है, हाँ या नहीं। वस्तु 1, खाली स्थान। वस्तु 2, खाली स्थान। वस्तु 3, खाली स्थान। वस्तु 4, खाली स्थान। वस्तु 5, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 117। गतिविधि 5, कलाकृतियों को सुरक्षित रखना। चित्र 5.13, 1960 के दशक के टेलीग्राम और टिकट। यहाँ दो चित्र हैं, इनमें 1960 के दशक के टेलीग्राम और टिकट प्रदर्शित किए गए हैं। जिस तरह एक पीतल की वस्तु को धोकर पॉलिश करने की, लकड़ी की वस्तु को मुलायम ब्रश से साफ करने की आवश्यकता होती है और कपड़ों को किसी भी कील या नुकीले किनारों से दूर सावधानी पूर्वक लटकाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चित्रों को सावधानी पूर्वक लिफाफे में ऐसे रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वे मुड़े या खराब न हों और उनका आकार सुरक्षित रहे। किन्हीं दो कलाकृतियों का चयन कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चित्र 5.14, कश्मीर के पीतल का समोवर यानी चाय बनाने का बर्तन। यहां एक चित्र दिया गया है, इसमें कश्मीर का पीतल का समोवर यानी चाय बनाने का बर्तन प्रदर्शित किया गया है। एक, कलाकृतियां सुरक्षित और अच्छी स्थिति में रहें ये सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे? गतिविधि 6, कलाकृतियों पर प्रस्तुति तैयार करना। प्रत्येक कलाकृति के पीछे एक कहानी होती है और आपको इसे विद्यालयी संग्रहालय आने वाले प्रत्येक आगंतुक के सामने प्रस्तुत करना होगा। आप इसे कई तरीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कलाकृति के बारे में कोई लोक कथा बता सकते हैं या स्वयं इसके विषय में एक कहानी विकसित कर सकते हैं। आप वीडियो भी बना सकते हैं, विशेषकर उन वस्तुओं की जिन्हें आप विद्यालय नहीं ला सकते हैं, या किसी व्यक्ति का साक्षात्कार कर सकते हैं जो वस्तु के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी दे, डिजिटल स्लाइड बना सकते हैं। चित्र 5.15, पुनर्चक्रित ऊन और कपड़े से बना एक पुराना हस्त निर्मित पंखा जिसका उपयोग सभी घरों में बिजली पहुंचने से पहले किया जाता था। यह एक चित्र दिया गया है, इसमें हाथ के पंखे को प्रदर्शित किया गया है। पृष्ठ संख्या 118, ब्लॉग या विकिपीडिया लेख लिख सकते हैं या कलाकृति का वर्णन करने के लिए चार्ट और कलर पेन का उपयोग करके पोस्टर तैयार कर सकते हैं। इन प्रश्नों पर सोचिए और उत्तर दीजिए। एक, आप किस तरह की प्रस्तुति देंगे, जैसे डिजिटल स्लाइड प्रस्तुति, पोस्टर, वीडियो आदि। खाली स्थान। दो, आपने इस प्रस्तुति का चयन क्यों किया, खाली स्थान। तीन, आपकी प्रस्तुति की विशिष्टताएं क्या हैं, जैसे पोस्टर का आकार, वीडियो की अवधि आदि, खाली स्थान। आगंतुकों को प्रदर्शित करने से पहले अपने समूह में कलाकृति का मौखिक वर्णन देने का अभ्यास कीजिए। चित्र 5.16, विद्यालय के संग्रहालय में शैक्षिक खिलौनों का ऐतिहासिक महत्व दर्शाया गया है। यह एक चित्र है, इसमें विद्यालय के संग्रहालय में शैक्षिक खिलौनों के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 119। स्वयं की प्रस्तुति का अनुवाद करना। ऐसे कई AI टूल हैं जैसे भाषणी अनुवाद और गूगल अनुवाद, जिनका उपयोग अन्य भाषाओं में ऑडियो प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए किया जा सकता है। भाषणी अनुवाद। भाषणी अनुवाद AI टूल का एक सेट है जो बोले गए शब्दों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकता है। ये भारतीय भाषाओं में अनुवाद, प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन और लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिट्रेशन करने में सहायता करता है। ये उपयोगकर्ताओं को अपनी पसंदीदा भारतीय भाषाओं में संचार करने, जानकारी तक पहुंचने और सामग्री बनाने में सक्षम बनाता है। गूगल अनुवाद। गूगल अनुवाद एक टूल है जो अंग्रेजी के शब्दों, वाक्यांशों और वेब पेजों का तुरंत 100 से अधिक अन्य भाषाओं में अनुवाद करता है। यहां एक टेबल दी गई है जिसमें दो कॉलम हैं, भाषणी अनुवाद, गूगल अनुवाद। भाषिणी अनुवाद चरण एक, भाषिणी पर पहुंचिए। अपने कंप्यूटर या टैबलेट पर एक वेब ब्राउजर खोलिए। सर्च बार में भाषिणी टाइप कीजिए और एंटर दबाइए। उपकरण तक पहुंचने के लिए भाषिणी वेबसाइट लिंक पर क्लिक कीजिए। चरण दो, अपनी भाषा चुनिए। उस अनुभाग की तलाश कीजिए जो आपको भाषाएं चुनने की सुविधा देता है। भाषिणी कई भाषाओं का अनुवाद कर सकती है, इसलिए वो चुनिए जिसे आप बोलना चाहते हैं और जिसका आप अनुवाद करना चाहते हैं। चरण तीन, अपनी पाठ्य सामग्री यानी टेक्स्ट लिखिए। एक ऐसा स्थान ढूंढिए जहां आप अपना वाक्य टाइप कर सकें या बोल सकें। यदि आप टाइपिंग में अधिक सहज हैं तो कीबोर्ड का उपयोग कीजिए। यदि आप बोलना चाहते हैं तो सुनिश्चित कीजिए कि आपके डिवाइस में माइक्रोफोन हो और माइक्रोफोन आइकन खोजिए। चरण चार, अनुवाद कीजिए और सुनिए। एक बार जब आप अपना पाठ लिख लेंगे तो अनुवाद बटन पर क्लिक कीजिए। यदि आप वॉइस इनपुट का उपयोग कर रहे हैं तो भाषिणी द्वारा आपके बोले गए शब्दों को तैयार यानी प्रोसेस होने तक प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद भाषिणी आपको स्क्रीन पर अनुवादित पाठ दिखाएगी। यदि उपलब्ध हो तो आप स्पीकर आइकन पर क्लिक करके अनुवादित संस्करण भी सुन सकते हैं। चरण पांच, प्रयोग और अन्वेषण कीजिए। विभिन्न वाक्यों और भाषाओं के प्रयोग से न डरें। भाषिणी के साथ प्रयोग करके देखिए कि ये विभिन्न स्थितियों में कैसे काम करता है। उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का अन्वेषण कीजिए, जैसे भाषा की दिशा बदलना या सेटिंग समायोजित करना। गूगल अनुवाद चरण एक, गूगल अनुवाद पर पहुंचिए। अपने कंप्यूटर या टैबलेट पर एक वेब ब्राउजर खोलिए। सर्च बार में गूगल ट्रांसलेट टाइप कीजिए और एंटर दबाइए। टूल तक पहुंचने के लिए गूगल ट्रांसलेट वेबसाइट लिंक पर क्लिक कीजिए। चरण दो, अपनी भाषा चुनिए। भाषिणी के समान मूल भाषा यानी जिस भाषा का अनुवाद करना है और लक्षित भाषा यानी जिस भाषा में अनुवाद करना है चुनिए। चरण तीन, अपनी पाठ्य सामग्री यानी टेक्स्ट लिखिए। वो वाक्य टाइप कीजिए या बोलिए जिसका आप अनुवाद करना चाहते हैं। गूगल अनुवाद में वॉइस इनपुट के लिए एक माइक्रोफोन आइकन भी उपलब्ध है। चरण चार, अनुवाद कीजिए और सुनिए। अनुवादित पाठ देखने के लिए अनुवाद बटन पर क्लिक कीजिए। आप स्पीकर आइकन पर क्लिक करके भी अनुवाद सुन सकते हैं। चरण पांच, अतिरिक्त सुविधाओं का अन्वेषण कीजिए। गूगल ट्रांसलेट वार्तालाप मोड जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है जो आपको आगे और पीछे अनुवादित वार्तालाप करने की अनुमति देता है। चरण छह, अभ्यास कीजिए और आनंद लीजिए। वाक्यों का अनुवाद करने का अभ्यास कीजिए और ये जानने का आनंद लें कि ये टूल भाषाओं की दुनिया को कैसे विस्तृत कर सकते हैं। गतिविधि सात, कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करना। पृष्ठ संख्या 120, गतिविधि सात, कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करना। प्रदर्शनी दिवस, चित्र 5.17, एकत्रित कलाकृतियों का प्रदर्शन। यहां एक चित्र है जिसमें एकत्रित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया है। पृष्ठ संख्या 121, एक, आप अपने साथियों के साथ शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यालय में कला शिल्प की प्रदर्शनी आयोजित कर सकते हैं। विद्यालय के परिसर में एक उपयुक्त तारीख और स्थान निर्धारित कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि चयनित स्थान उचित प्रदर्शनी और आगंतुकों के लिए पर्याप्त हो। दो, संग्रहालय के लिए 5 कलाकृतियों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर काम कीजिए। प्रत्येक कलाकृति के संक्षिप्त विवरण पर चर्चा करके उसे अंतिम रूप दीजिए। अंतिम विवरण को उचित ढंग से सूचक पत्र पर लिखिए। चर्चा कीजिए कि ये सूचक पत्र किस प्रकार लगाए जाएंगे, डिस्प्ले बोर्ड पर या कलाकृतियों के पास चार्ट पर। तालिका 5.3। 3. टेबल, स्टैंड और डिस्प्ले बोर्ड को व्यवस्थित कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि कलाकृतियां सुरक्षित रूप से प्रदर्शित और चिह्नित की गई हों। 4. प्रदर्शनी को बढ़ावा देने के लिए पोस्टर, फ्लायर्स और सोशल मीडिया पोस्ट बनाइए। 5. माता पिता, परिवार, दोस्तों, स्कूल स्टाफ और समुदाय के सदस्यों को निमंत्रण भेजिए। अपने दोस्तों और परिवार को भी आमंत्रित कीजिए। 6. कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन निर्धारित समयानुसार कीजिए और आगंतुकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त कीजिए ताकि ये समझा जा सके कि क्या अच्छा हुआ और क्या सुधार की आवश्यकता है। तालिका 5.3। वस्तुओं को संक्षेप में वर्णित करने के सूचक पत्र यानी लेबल। वस्तु, सूचक पत्र पर विवरण। वस्तु 1, खाली स्थान। वस्तु 2, खाली स्थान। वस्तु 3, खाली स्थान। वस्तु 4, खाली स्थान। वस्तु 5, खाली स्थान। पृष्ठ संख्या 122। कलाकृतियों को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा इसका लेआउट दिखाने के लिए एक रेखाचित्र बनाएं। यहाँ खाली स्थान दिया गया है, इसमें आप कलाकृतियों को दिखाने के लिए एक रेखाचित्र बना सकते हैं। अपनी प्रस्तुति से संबंधित प्रतिपुष्टि और टिप्पणियों, प्रदर्शित कलाकृतियों और अन्य सुझावों के लिए एक आगंतुक पुस्तिका रखिए। मैंने दूसरों से क्या सीखा। यदि आप किसी संग्रहालय का भ्रमण करने गए थे तो पता लगाएं कि संग्रहालयों में कलाकृतियों को कैसे संग्रहित किया जाता है और कैसे उनकी देखभाल की जाती है। संग्रहालयों द्वारा उपयोग की जाने वाली कम से कम 3 विधियां लिखिए। क, खाली स्थान। ख, खाली स्थान। ग, खाली स्थान। विशेषज्ञों से सीखें। किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित कीजिए जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। उदाहरण के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो संग्रहालय में काम करता हो, कोई इतिहासकार या पुरातत्वविद। अपनी कक्षा के साथ ऐतिहासिक कलाकृतियों पर चर्चा करने के लिए कम से कम 3 बातें लिखिए जो आपने सीखी। कलाकृतियों पर लघु वृत्त चित्र संवाद कार्यक्रम यानी टॉक शो सुनिए और जानिए कि कैसे ये कलाकृतियां हमें प्राचीन काल में लोगों के जीवन को समझने में सहायक होती हैं। पृष्ठ संख्या 123। कम से कम 3 बातें लिखिए जो आपने सीखी हों। 1, खाली स्थान। 2, खाली स्थान। 3, खाली स्थान। आगंतुकों से सीखना। आगंतुकों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के कोई 3 उदाहरण लिखिए। 1, खाली स्थान। 2, खाली स्थान। 3, खाली स्थान। इस प्रतिपुष्टि से आपने क्या सीखा। खाली स्थान। मैंने क्या कार्य किया और इसमें कितना समय लगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि किसी गतिविधि को पूरा करने में कितना समय लगता है। गतिविधि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समयावधि अर्थात कालांश। यह एक समय रेखा दी गई है, इसमें गतिविधियों और उनकी समयावधि को दर्शाना समझाया गया है। प्रत्येक गतिविधि पर आपने लगभग कितना समय व्यतीत किया इसकी गणना कीजिए उन्हें समय रेखा पर चिन्हित कीजिए। यदि आपने पुस्तिका में सुझाई गई गतिविधियों से अधिक गतिविधियां की हैं, तो उन अतिरिक्त गतिविधियों की संख्या और उनके लिए व्यतीत समय को भी जोड़िए। पृष्ठ संख्या 124। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं और क्या कर सकती हूं? विभिन्न शहरों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के साथ परियोजना पर चर्चा कीजिए। उनसे अपने घर या क्षेत्र में उपस्थित संग्रहालय में रखी कुछ कलाकृतियों के बारे में जानकारी साझा करने या बताने के लिए कहिए। अपनी कक्षा में वस्तु या चित्र लाकर उन्हें प्रदर्शित कीजिए। सोचिए और जवाब दीजिए। 1. आपको क्या करने में आनंद आया? 2. आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? 3. आप क्या अलग करना चाहेंगे? 4. संग्रहालय हमें अपनी विरासत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने में कैसे सहायता करते हैं? 5. परियोजना से संबंधित अन्य कौन सी नौकरियां हैं? आसपास का अवलोकन कीजिए, लोगों से बात कीजिए और अपना उत्तर लिखिए। आपके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित नौकरियों के कुछ उदाहरण हैं: पुरातत्वविद, इतिहासकार, संग्रहालय क्यूरेटर और टूर गाइड आदि। इसके साथ ही 5वां अध्याय समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कौशल बोध। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। वाचन स्वर मुइनुल हुसैन। निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहे।

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी मौसम मौसम लवली मौसम। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने जाना कि मॉनसून का मतलब बारिश नहीं होता। हर मॉनसून में बारिश भी नहीं होती। हर मॉनसून के पीछे कुदरत की कई क्रियाएं काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनते हैं विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी मौसम मौसम लवली मौसम।

0: अरे सृष्टि, ओ सृष्टि।
1: जी मम्मी।
0: ये नल तो बंद कर ना, पानी बह रहा है कब से।
1: अच्छा,
0: और सुन, वो मानव को तो आवाज लगा, सुबह से न जाने क्या कर रहा है छत पे।
1: अरे करेगा क्या मम्मी, छत पर आज बहुत सारी पतंगे आ रही हैं, बस उन्हें इकट्ठा कर रहा होगा।
0: ओ, तो आज भी उसका लवली लवली मौसम है।
1: हाँ मम्मी, सुबह से उसने 5 पतंगे जो इकट्ठी कर ली हैं।
2: अरे भाई, किसके लिए आज मौसम लवली लवली है। अरे हमें तो सुबह से आज चाय भी नहीं मिली है।
0: मैं बस उसी की तैयारी कर रही हूँ।
2: अरे वसुधा, जैसा कि तुमने कहा, मैंने बगीचे का सारा कबाड़ आज साफ कर दिया है। पिछले हफ्ते तो सुबह सुबह ही इतनी गर्मी हो गई थी कि कुछ भी काम करने का मन नहीं किया। तो अब चाय।
1: ओ, तो मानव की तरह आप भी आज खुश हैं।
2: अरे भाई, मौसम ही ऐसा है बेटा।
1: लवली लवली।
3: मानव, आज तो मानव बड़ा खुश है। क्या बात है मानव, ये 5 पतंगों की करामात है।
2: नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये मौसम की करामात है। अब मैं बगीचे की सफाई करने की 1 महीने से सोच रहा था, पर मूड नहीं बन रहा था। और आज सुबह सुबह ही उठकर मैंने देखा मौसम इतना बढ़िया है, तो सारा बगीचा भी साफ कर दिया।
0: अरे वाह, कीजिए आपकी चाय।
2: थैंक यू, यू आर सो स्वीट वसुधा।
0: हाय आप।
2: अरे वाह वाह वाह, आज देखो आपकी मम्मी भी बहुत खुश लग रही है। कल कैसे गुस्सा हो रही थी।
3: अरे पापा, कल आपने देखा ही होगा कि कितनी गर्मी थी, ऊपर से बिजली नहीं। ऐसी गर्मी में आपको चूल्हे के सामने खड़ा होकर खाना बनाना पड़े तो क्या होगा।
2: हाँ वैसे तुम बिल्कुल ठीक है। ये मौसम हमारे तन मन भावनाओं सबको प्रेरित करता है।
1: आखिर ये मौसम है क्या भला।
0: पापा के मूड की तरह, वो जब अच्छा होता है तो कई दिनों तक अच्छा रहता है, और खराब हो जाए तो कई दिनों तक खराब रहता है।
1: तब तो मम्मी का मूड मौसम है और पापा का जलवायु।
2: मुझे क्यों बती रहे भाई। वैसे एक तरीके से तुम बच्चे ठीक ही कह रहे हो। जब मौसम बदलता है तो लोगों का मूड बदलता ही है, पर मौसम इतिहास भी बदल देता है।
3: वो कैसे?
2: बच्चों, भारत का इतिहास गवाह है कि शेरशाह ने हुमायूं को हराने में मौसम की भी भरपूर मदद ली थी।
0: और जानते हो बच्चों, हुमायूं ने शेरशाह के बिहार के विद्रोह को दबाने के लिए आक्रमण किया, तो शेरशाह बंगाल की ओर भागता रहा। उसके पीछे हुमायूं भी बंगाल आ गया, तब वहाँ वर्षा हो रही थी।
2: हाँ, और गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आने से दिल्ली जाने के सभी रास्ते बंद हो गए।
3: अच्छा।
2: पर हुमायूं वहीं डेरा जमाए रहा, और तब शेरशाह अपनी मांद से निकला और उसने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं को हार का मुंह देखना पड़ा, खुद भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया। अरे सब जानते हैं कि वो गंगा में कूद पड़ा और एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई।
1: पापा, मैंने सुना है भोपाल में 2 और 3 दिसंबर को एक कारखाने से जहरीली गैस के रिसाव से 2500 व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
2: हाँ बेटा। हाँ।
1: कुछ विशेषज्ञों का विचार है, उस रात अगर वर्षा होती या तेज हवाएं चलती तो जहरीली गैस या तो पानी में घुल जाती या हवा उसे दूर ले जाती, जिससे उसके प्रभाव अधिक क्षेत्र पर तो होते परंतु इतने घातक नहीं होते।
2: बिल्कुल।
1: ठंडे मौसम में तो कोहरे के कारण सड़क पर दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती है ना पापा।
2: हाँ मानव, पता है एक बार 1952 में लंदन को कोहरे की मोटी मोटी परतों ने ढक लिया और 4 दिन तक ढके रहा।
3: अच्छा।
2: हाँ, और जब कोहरा छटा तो 4000 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी थी।
1: पापा, आप तो बुरे मौसम की बातें करके मुझे भी डरा रहे हैं। आज तो मौसम कितना लवली लवली है।
0: मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये मौसम बदले इससे पहले पिकनिक पर निकल चलो।
2: एक मिनट, पहले पूछ तो लो मुझसे।
1: बोलो ना पापा।
2: तो चलो ना भाई।
4: देखो सूर्य प्रकाश, नदी के इस किनारे को हमने पिछले 3 साल में कैसे एक पिकनिक स्थल में बदल दिया है।
2: भाई सुंदर तो बहुत लग रहा है भैया, तुमने सब कुछ कमाल कर दिया भैया।
1: नमस्ते
4: नमस्ते बच्चों, नमस्ते।
2: बच्चों, ये है मेरे बचपन के दोस्त डॉक्टर अनुराग।
4: एक बार फिर नमस्ते बच्चों। आओ बच्चों, देखो यहाँ हमने छोटी छोटी कॉटेजेस बना दी है।
2: बड़ी सुंदर है।
4: चलो पहले तुम्हें दिखाऊं कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं।
3: मैंने सामान गाड़ी से उतार कर कॉटेज में रख दिया है।
2: ठीक है ठीक है ठीक है। और अरे सुनो, अरे वो पकौड़े तो देते जाओ जो तुम घर से बनवा के लाए हो।
5: वो तो मैंने हजम कर दिए
2: रास्ते में।
1: और हजम करके ये कागज और एल्यूमिनियम की पन्नी और खाली पानी की बोतल भी यही फेंक दी।
0: मानव कब अपने आप को बदलोगे?
5: मम्मी
0: देखो यहाँ सब जगह कितनी साफ है, हर जगह हरी भरी है, पास में नदी बह रही है। अगर इस जगह पर सभी तुम्हारी तरह कूड़ा फेंकने लगे तो शाम तक ये सुंदर जगह कूड़ेदान बन जाएगी।
4: अरे भाभी जी मानव को डांटिए नहीं। देखो माना बेटा, वहाँ सामने दो कूड़ेदान रखे हैं,
3: तो उठाओ ये कूड़ा और डाल दो नीले वाले में ये प्लास्टिक की बोतल और अल्मोनियम की पन्नी और कागज हरे वाले में। चल जा फटाफट। अच्छा। जा
6: मानव मैं आ गया।
7: अरे मानव आज यहाँ की सफाई का काम तुमने ले लिया है क्या?
5: अरे गौरव तू यहाँ? लगता है विवेक भैया ने तुझे पहले ही फोन कर दिया होगा।
7: हाँ हाँ विवेक भैया ने मुझे पहले ही फोन कर दिया था।
5: गौरव देखो ये मानव अपनी आदतें बदलता ही नहीं है।
7: सृष्टि दीदी मानव हमारा बहुत अच्छा दोस्त है पर कभी कभी भूल कर बैठता है।
3: कभी कभी
7: पर मानव मैंने सुना है कि आज तुमने 5 पतंगे लूटी है। That's great.
3: गौरव कुछ भी कहो पतंग लूटने का तो मजा ही कुछ और है।
7: और ऐसी खुली हवा में पतंग उड़ाने का मजा ही कुछ और है। भैया यहाँ जगह भी कितनी खुली खुली है ना।
5: सच गौरव पतंग उड़ाने में मजा आएगा, इसीलिए मैं सारी पतंगे और डोर भी ले आया हूँ।
4: बच्चों पतंग बाद में उड़ाना, पहले कुछ नाश्ता कर लो।
5: नाश्ता?
4: और चाय नाश्ते के बाद मैं तुम्हें यहाँ के वातावरण से अवगत करा दूंगा।
2: वैसे अनुराग यहाँ तो पूरा वातावरण ही बदल गया है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। ओ, कई पक्षी भी दिख रहे हैं।
4: हाँ भाई हम इसे एक जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम इस स्थान को एक ऐसे पार्क के रूप में विकसित कर रहे हैं जहाँ लोगों को प्रकृति का नजारा देखने को तो मिले, साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को भी समझ सके।
3: डॉक्टर अंकल मैंने सुना है आपके यहाँ मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के यंत्र भी हैं।
4: ठीक सुना तुमने विवेक, ये सभी उपकरण यहाँ लगे हैं। मौसम विभाग के कर्मचारी भी यहाँ दिन में एक बार आते हैं।
2: तब तो तुम्हें भी मौसम विज्ञान की काफी जानकारी हो गई होगी।
4: हाँ भाई मैं भी एक शौकिया मौसम विज्ञानी हूँ। यहाँ मैं भी आंकड़े इकट्ठे करता हूँ और उनके आधार पर आने वाले मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ।
5: यहाँ भी मौसम की बात। अच्छा अंकल मौसम अच्छा कब और कैसे होता है ये तो मुझे पता चल गया, पर खराब कब होता है?
4: बेटे मौसम कई तरह के होते हैं, जैसे ठंडा या गर्म, सूखा या नम, सुहाना या तूफानी वगैरह वगैरह। परंतु हर मौसम बनता है विभिन्न कारकों की आपसी जटिल क्रियाओं से,
5: और जिनमें शामिल है हवा की गति, दबाव, तापमान, बादलों की उपस्थिति, नमी, हवा।
0: बस बस बस मानव करने लगा परेशान तू अपने अंकल को। हा?
4: अरे नहीं नहीं भाभी मेरा तो ये शौक है और मुझे ऐसे सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है।
1: अगर मैं कहूँ कि वायुमंडल की स्थिति ही मौसम का निर्माण करती है तो क्या ये सही होगा भैया?
3: सृष्टि बिल्कुल ठीक होगा, मौसम से संबंधित सभी क्रियाएं तो वायुमंडल की निचली परत यानी क्षोभमंडल में ही होती हैं, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 10 किलोमीटर है और जो ध्रुवों पर और पतली हो जाती है।
4: ठीक कहा तुमने विवेक। अगर देखा जाए तो मौसम के निर्माण में 3 मुख्य कारक हैं।
5: कौन कौन से?
4: सूर्य, हवा और पानी।
5: अंकल कोई ऐसा तरीका बताओ कि मौसम जैसा आज है वैसा हमेशा बना रहे, यानी लवली लवली।
4: लवली लवली यानी?
5: देखो अंकल आज सबका मूड कितना अच्छा है और सब खुश भी है। पापा मुझे पढ़ने को भी नहीं कह रहे हैं और आज मम्मी भी घर का काम छोड़कर हमारे साथ आ गई है। क्यों हुआ ना मौसम लवली लवली?
2: बेटा बेटा कहीं मौसम एक जैसा नहीं रह सकता, ये कब बदल जाए इसका भी पता नहीं होता। किताब लाए हो साथ में?
5: पापा।
7: हाँ अंकल तभी एक मौसम वैज्ञानिक ने कहा है तितली के अर्जेंटीना में

0: रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों को सबसे ज्यादा ऊष्मा मिलती होगी।
1: लेकिन वहाँ भी सारे क्षेत्र एक जैसे गर्म नहीं होते। भूमध्य रेखा पर सारे क्षेत्र में भूमि नहीं है, वहाँ समुद्र भी है।
2: और समुद्र थल की अपेक्षा कम गर्म होते हैं, पर अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र में 600 मीटर तक जा सकती है, पर थल पर केवल कुछ मीटर तक ही।
0: पर थल तो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म,
3: और पानी ना तो जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा।
1: तभी जितना तापमानों में अंतर थल पर होता है, समुद्र में नहीं।
4: हाँ भाई, साइबेरिया में तापमान -46 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, परंतु समुद्र में कहीं भी इतना कम तापमान नहीं होता।
3: यानी समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए हमेशा मौसम लवली लवली। अरे वाह पापा, हमें भी अपना घर समुद्र में ही बना लेना चाहिए, तब आपका मूड भी हमेशा ठीक रहेगा।
1: सूर्य प्रकाश
2: बहुत बढ़िया मानो, बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल, अगर मैं कहूँ कि मौसम को सुहाना और खराब करने में हवा का बड़ा हाथ है, तो क्या ये सही होगा?
1: हाँ, क्योंकि वैसे तो मौसम के निर्माण से जुड़े कई कारण अभी भी ठीक ठीक समझे नहीं गए हैं, परंतु हवा एक मुख्य कारक है।
5: अच्छा, तो क्या स्थायी हवाएं जैसे ट्रेड विंड और अस्थायी व स्थानीय हवाओं का मौसम से गहरा संबंध है?
1: बिल्कुल है बेटे, परंतु इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर जो वायुमंडल के विभिन्न संचरण है उन्हें समझना होगा।
3: लेकिन अगर सबका पेट खाली होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए।
4: अच्छा जाओ, अच्छा जाओ, अपनी मम्मी का हाथ बटवाओ, जाओ जाओ, वो तैयारी कराओ, जाओ चल।
1: सचमुच मजा आ गया खाने का,
3: पर हमें तो पतंग उड़ाने का मजा ही नहीं आया।
1: क्यों?
5: अरे मानव, पहले हवाओं के बारे में समझ तो लो, फिर उसी हिसाब से पतंग उड़ाना।
1: भाई ऐसी हवाएं जो हमारे मौसम को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम तीन वर्गों में रख सकते हैं।
3: कौन कौन सी अंकल?
1: भाई ऐसी हवाएं जिनका संचार पूरे पृथ्वी ग्रह को प्रभावित करता है।
5: कहीं आप ट्रेड विंड यानी व्यापारिक हवाओं की बात तो नहीं कर रहे?
1: हाँ गौरव बेटे, तुमने पृथ्वी का नक्शा तो देखा होगा, है ना? उस पर एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है,
3: उसे भूमध्य रेखा कहते हैं।
1: हाँ।
3: इस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं।
2: बिल्कुल ठीक मानव, और ये क्षेत्र हमेशा गर्म और नम रहते हैं, और यहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है।
1: ठीक कहा तुमने विवेक, पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है?
5: अंकल मैं बताऊँ? क्योंकि अंकल यहाँ पर थल और जल दोनों ज्यादा है और दोनों ही गर्म हो जाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक, और इस कारण इस क्षेत्र पर जो वायु जल और थल के संपर्क में आती है वो भी गर्म हो जाती है,
3: और गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है,
1: और ऊपर उठने से वो पुनः ठंडी हो जाती है, और उसमें उपस्थित वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है, और इस क्षेत्र में लगभग पूरे साल वर्षा होती रहती है और मौसम नम बना रहता है।
5: तब तो अंकल नीचे यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता होगा।
0: और इस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवा उच्च दबाव क्षेत्र से यहाँ पहुँचती होगी, क्योंकि हवा अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर गति करती है,
1: और इसी को हम हवा यानी विंड कहते हैं, और ये पवन यानी कि हवा विश्वव्यापी भी हो सकती है, और जैसे व्यापारिक पवने और स्थानीय भी, जैसे जल और थल समीर, है ना?
5: यानी मौसम के मिजाज का पता करना है तो वायुमंडल के दाब का पता कर लो।
1: हाँ बेटे, और जो हवा जिस दिशा से आ रही है उसी के अनुसार मौसम ठंडा गर्म शुष्क या नम होगा।
4: अरे तभी तो हवाओं को उनकी आने की दिशाओं से ही जाना जाता है, जैसे पूर्वा या पछुआ।
3: हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी भी मुझे बताती थी कि पूर्वा हवाएं ठंडी और शुष्क होती हैं, और पछवा गर्म तो होती है पर वो शुष्क भी हो सकती हैं और नम भी हो सकती हैं।
0: तब तो अंकल हमें यदि ये पता हो कि पृथ्वी पर कहां कहां उच्च या निम्न दाब क्षेत्र हैं, तो हम वहां के मौसम के बारे में कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
3: पर उच्च और निम्न दाब क्षेत्र से मौसम का क्या संबंध?
2: अरे भाई मानव, मौसम का मतलब वायुमंडल में हलचल, और हलचल तो तभी होगी जब किसी स्थान पर वायु दाब में अंतर हो।
0: हाँ विवेक भैया, दाब में अंतर होने पर हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेंगी।
1: बच्चों, भूमध्य रेखा के क्षेत्रों से हवाएं ऊपर उठकर ध्रुवों की ओर यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की तरफ बहेंगी, और ध्रुवों पर जहाँ उच्च दाब है वहाँ से हवाएं भूमध्य रेखा की तरफ बहेंगी।
4: परंतु ऐसा होता नहीं।

0: नहीं है।
1: क्यों?
0: क्योंकि भूमध्य रेखा पर हर जगह सूर्य की ऊर्जा अलग अलग मिलती है, और फिर कहीं पानी है तो कहीं जमीन, जो सूर्य की ऊष्मा अलग अलग मात्रा में अवशोषित करते हैं। इसके अलावा रात और दिन आदि कई कारक हैं, और इन सबसे एक और बड़ा कारक है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जो हवाओं पर कोरियोलिस प्रभाव पैदा करता है, जिससे हवाएं अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती हैं, यानी उसकी दिशाओं में परिवर्तन आ जाता है।
1: तो क्या वे गर्म हवाएं ध्रुवों तक नहीं पहुंचती?
2: पहुंची तो है बेटे, परंतु बड़ी जटिल प्रक्रिया से गुजरने के बाद।
3: जटिल प्रक्रिया मतलब?
0: देखो भाई, भूमध्य रेखा पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलती है, और 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के पास कुछ हवा नीचे उतर जाती है। यहाँ उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, परंतु इसकी सारी नमी पहले ही समाप्त हो जाती है। इसलिए इन कम दबाव के क्षेत्रों में मौसम तो शांत होता है, परंतु वर्षा कम या बिल्कुल नहीं होती।
1: शायद तभी अमेरिका का दक्षिण पश्चिम इलाका तथा अफ्रीका का सहारा क्षेत्र कम दबाव क्षेत्र में आता है।
4: मानव, इस बेल्ट को जो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तर और दक्षिण गोलार्ध पर स्थित है, उसे अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। इस अक्षांश पर शेष हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं, एक भूमध्य रेखा की ओर चली जाती है और दूसरी ध्रुवों की ओर।
1: जो हवा अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर वापस आती है, उन्हें व्यापारी हवाएं यानी ट्रेड विंड्स कहते हैं।
4: बिल्कुल ठीक है। इन हवाओं को व्यापारी हवाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले यूरोप के जहाज इन हवाओं के सहारे यात्रा किया करते थे।
2: हाँ बेटे, व्यापारी हवाएं भूमध्य रेखा पर पहुँचने पर एक संवहन चक्र पूरा कर लेती है। इस भूमध्य रेखिक संवहन चक्र को मौसम वैज्ञानिक जॉर्ज हेडले के सम्मान में हेडले चक्र कहा जाता है।
1: पापा, भूमध्य रेखा से क्या सभी हवाएं अश्व अक्षांश क्षेत्र तक सीमित हो जाती हैं?
0: नहीं बेटा, नहीं। भूमध्य रेखा से कुछ हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों तक पहुंच जाती हैं, और भूमध्य रेखा से आई इन हवाओं को पश्चिमी पवन या प्रतिकूल व्यापारी पवन कहा जाता है।
4: और प्रतिकूल व्यापारी हवा मतलब इनकी दिशा व्यापारी हवा के विपरीत होती है।
1: शायद इन हवाओं का कोई व्यापार करने नहीं आया होगा।
2: व्यापार न सही, लेकिन इनकी गति काफी तेज और स्थायी हवाओं में सबसे अधिक होती है।
1: तेज तो अंकल हमारा मानव भी है, लेकिन वो गति में नहीं, खाने में तेज है।
3: हाँ दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मुझे भूख भी लगाई है।
2: अच्छा। लो बेटा, तुम सेब खाओ।
4: अंकल, सेब तो हम भी खाएंगे।
2: अच्छा बच्चों, तुम सब सेब लो, ये लो, ये लो।
5: मैं बच गया भाई।
1: अंकल, मैंने एक पत्रिका में हवाओं के कुछ विचित्र नाम 50-40 सही से याद नहीं आ रहा, पढ़े तो थे।
4: सृष्टि, मैं बताता हूँ, कहीं तुमने गरजती 40, भयानक 50 और चीखते 60 तो नहीं पढ़े थे?
1: हाँ हाँ भैया, मैंने यही नाम पढ़े थे।
3: लेकिन भैया, ये कैसे विचित्र नाम है?
4: मानव घबराओ नहीं, मैं बताता हूँ। जब पश्चिमी पवन तीव्र गति से बहती हुई 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक बनी रहती है, तो इसे गरजती 40 या रोरिंग 40 कहते हैं।
6: लेकिन हवाओं के अन्य नाम कैसे पड़े?
4: पापा आप ही बता दो।
0: अरे बेटा, जब ये पवन 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है तो इसे भयानक 50, फ्यूरियस 50, और 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच होने पर इसे चीखते 60, स्क्रीमिंग 60 कहा जाता है।
1: मुझे तो पता ही नहीं था कि पवन चीखती भी है।
3: अगर आपने जल और थल समीर को स्थायी पवन बताया था ना?
2: हाँ मानव, जल और थल के ऊष्मा धारिता गुण में भिन्नता के कारण दिन में पवन जल से थल की ओर तथा रात में थल से जल की तरफ चलती है।
6: इसका मतलब है कि दिन में गर्मी से जल के ऊपर दाब की मात्रा थल के दाब से अधिक होती है,
1: और रात में थल के ऊपर अधिक दाब होता है और जल के ऊपर कम, है ना अंकल?
2: हाँ बेटे, ऐसा ही होता है।
3: लेकिन अंकल, पर्वतीय घाटियों में तो दिन और रात दोनों समय मौसम सुहाना होता है।
2: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों में सुहाने मौसम के लिए हमें आरोही और अवरोही हवाओं को धन्यवाद देना चाहिए, जो वहाँ के मौसम को खुशनुमा बनाए रखती है।
3: आरोही और अवरोही हवाएं।
4: हाँ
3: विवेक भैया,
1: कहीं ये गणित के आरोही और अवरोही सिद्धांत की बात तो नहीं है?
4: मानव, तू फिर से घबराने लगा।
1: बताओ ना भैया।
4: अरे नहीं, ये आरोही अवरोही तो स्थानीय भवन है।
2: हाँ बच्चों, पर्वतीय घाटियों से पवन का पर्वत की ओर अर्थात ऊपर बहती पवन आरोही पवन कहलाती है। इस प्रकार गर्म होती वायु ऊपर उठती जाती है।
5: अच्छा, इसीलिए दिन में घाटियों में ठंडक रहती है
7: और रात में पर्वत की चोटियां घाटियों की तुलना में तेजी से ठंडी होती हैं। इसीलिए रात में चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवन ठंडी होती है और इन्हें अवरोही पवन कहा जाता है।
2: बच्चा
5: अंकल, अब बाहर जाकर पिकनिक का मजा भी लिया जाए।
2: हाँ, जरूर।
1: और बाहर जाकर देखें कि कौन सी हवा चल रही है।
2: हाँ बच्चों, अरे हम तो बताना ही भूल गए बातों बातों में कि बाहर हमने टेंट लगा रखा है।
6: अरे मानव, चल बाहर चलकर लवली लवली मौसम का आनंद ले।
2: हाँ, चलो चलो चलो चलो।
5: क्यों डॉक्टर साहब, बच्चों ने ज्यादा परेशान तो नहीं कर दिया?
1: मम्मी, हमने कोई शरारत नहीं की है।
2: भाई, बच्चों की मौसम संबंधी जिज्ञासा देखकर तो मेरा मन गदगद हो गया।
5: मम्मी, हम तो लवली लवली मौसम में बाहर बातें करने आए हैं।
8: अच्छा अच्छा, बैठो बच्चों, जरा हम भी तो सुने तुम्हारी लवली लवली बातें।
6: अरे मानव, ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है।
1: अरे हाँ,
5: मानव चाहे एरोप्लेन में बैठा ना हो लेकिन उसे उड़ते हुए तो देख ही सकता है।
1: अच्छा,
6: अरे बैठना क्या, हो सकता है बड़ा होकर मानव पायलट बने। एरोप्लेन तो क्या, जेट विमान भी उड़ाए।
1: अंकल, जेट विमान के बारे में सुनकर मुझे जेट प्रवाह का नाम याद आ गया।
2: बच्चों, धरती की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊंचाई पर करीब 160 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली घुमावदार पवन जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम कहलाती है।
5: ये पवन किस गोलार्ध में चलती है?
4: सृष्टि, जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में होती है।
7: हाँ, लेकिन बेटा, ये प्रत्येक गोलार्ध के 20 डिग्री से 50 डिग्री पर स्थित उष्ण क्षेत्र और 30 डिग्री से 70 डिग्री के ध्रुवीय क्षेत्रों दोनों में बहती है।
6: अच्छा, तो ये जेट प्रवाह वही है ना जिनका गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपर की ओर सरक जाना हमारे देश में मॉनसून का संकेत माना जाता है।
7: बिल्कुल ठीक, मॉनसून भी एक तरह की स्थानीय हवा ही है जिसकी उत्पत्ति महासागरों और महाद्वीपों के ताप में अंतर से होती है।
4: पर ये कोई साधारण घटना नहीं है, मॉनसून तो मौसम की अनेक घटनाओं से संबंधित है।
7: हाँ, पृथ्वी का घूर्णन, पर्वत और अन्य अवरोधों से पवनों की गति मंद हो जाने से मॉनसून प्रभावित होता है।
1: लेकिन ये मॉनसून समय का पक्का नहीं है।
7: हा?
1: कभी 10-20 दिन पहले ही आ जाता है और कभी इतनी बाद में आता है।
6: अरे मानव, मॉनसून तो अप्रैल जून से ही बनने लगता है जब उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समीप गर्मी पड़ने लगती है।
5: अच्छा, जब हमारी परीक्षाएं खत्म होती हैं तब ये मॉनसून अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है।
1: परीक्षाएं? भाई, मुझे तो बारिश में नहाना बहुत अच्छा लगता है। वो देखो, बाहर बादल छा रहे हैं और हवा भी चल रही है, पर मैं तो बाहर जा रहा हूँ।
5: अरे मानव, ये जेब में क्या लेकर जा रहे हैं बाहर, बिस्किट है क्या?
1: अरे दीदी, बिस्किट नहीं है, बिस्किट का खाली पैकेट है, ताकि बाहर जाते समय इसे कूड़ेदान में डाल दूं।
7: अरे वाह वाह वाह वाह, लगता है मानव समझदार हो गया। अब मानव कूड़े को इधर उधर न फेंकने का महत्व समझ गया है।
2: भाई, ये तो एक दिन मेरे साथ रहने का नतीजा है। भाई, अच्छे आदमी के साथ रहेगा तो अच्छे गुण भी सीखेगा।
7: डॉक्टर साहब, अरे हमें तो लगता है कि आप में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का गुण आ गया है।
2: भाई कुछ भी कहो, पर मेरे लिए आज की पिकनिक मजेदार रही। क्यों बच्चों, सही कहा ना मैंने?
1: हाँ, आज की पिकनिक बड़ी मजेदार रही।
8: भाई साहब, आपने पिकनिक को मनोरंजक और शिक्षा प्रद बनाया है
5: और मानव को लवली लवली मौसम के साथ क्लीन क्लीन बॉय भी।

धरती मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 28वीं कड़ी सुन रहे थे, मौसम मौसम लवली मौसम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: 5 साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
1: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
0: तो नहीं है आपके आहार में दम,
1: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
0: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
4: बिल्कुल सोचा है पापा।
3: क्या सोचा है?
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
3: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
4: जी पापा।
3: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
4: हाँ पापा बिल्कुल।
5: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
6: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
3: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
2: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
4: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
5: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: mixing in the house.
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
2: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा, छलावट की,

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Yeah. Gagan Kokri Fateh.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना।
1: पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियां टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।

0: दिमागी बुखार से बचे तो बेटा।
1: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
2: हाय, मैं उरण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
3: मैडम यू कैन बी वेरी फंटा।
4: केटो डाइट का नाम सुना है? आज से ये सब बंद और वो शुरू। उठो
5: अरे बीबी, जैसी पहले थी वैसी फिट हो जा।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चले।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन, आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहां की अमर रह गई और वो है इनकी।
6: ये तो तुम जैसा।
7: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है, कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
6: तुम मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या डराने लाए हो?
7: क्या पता हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना? अरे अरे अनाया, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती है तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, स्तनों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है। इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगी?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म होगी क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है।

0: है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और 10 शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। 10 के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं अरुण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम रोल नंबर एक,
2: साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर।
1: अरे वाह। नंबर दो,
3: मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर।
1: शाबाश। नंबर तीन,
2: बंद करो खुले में जाना, घर घर शौचालय बनवाना।
1: बढ़िया। रोल नंबर चार,
4: शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ।
1: अरे वाह। तुम
2: हैंड पंप के आसपास से सब गंदगी निकालो, पीने वाले पानी में क्लोरीन की गोली डालो।
1: बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। चलो अब सब बच्चों के लिए ताली बजाते हैं।
5: बच्चे तो ये बात जानते हैं, आप भी जान लीजिए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

इसीलिए तो कहता हूं, यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो। बाकी

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ। एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। पानी से दूर अपनी हथेलियों को रख लें।
2: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं।
1: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
2: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
1: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें।
2: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें।
1: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
2: तू सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ।
1: एस मतलब सीधा,
2: यू मतलब उल्टा,
1: एम मतलब मुट्ठी,
2: ए मतलब अंगूठा,
1: एन मतलब नाखून,
2: के मतलब
1: कलाई।
2: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से
1: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
2: जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाए।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
5: बिल्कुल सोचा है पापा।
4: क्या सोचा है?
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
4: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
5: जी पापा।
4: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
5: हाँ पापा बिल्कुल।
6: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
7: So where are you? The world is here at Sharda University.
8: Namaskar, main hu Abhinav Chaturvedi aur aap